मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

उन सब के बीच आपको शांति को चुनना ही पड़ेगा। फिर सारी कोशिश आप ही क्यों करें? कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। दूसरों को खुश करने की एक तरफा कोशिश में अक्सर आप खुद ही को खो देते हैं। कई बार लगता है कि हमारी बात सही होती है, पर लोगों को गलत क्यों लगती है? हमारी मंशा गलत नहीं होती, पर हमारे शब्द दूसरों को सहन ही नहीं होते। कई बार लोगों को आपकी करुणा की जरूरत होती है। रौबीले अंदाज में बात करने के बजाय वे आपको तब सुनते हैं जब आप उनसे करुणा में बात करें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, न कि उन्हें भाषण दें। बाहर का माहौल ही जब परेशान करने वाला हो तो भीतर बेचैनी, चिंता और अवसाद होगा ही ना। इस बड़े अजीबोगरीब भरे माहौल में जब आप दूसरों के दुख से दुखी हैं, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, तो घबराएं नहीं। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो ठीक है। अपने दुख से भागे नहीं, बस याद रखें कि जो भी महसूस हो रहा है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। दुख का यह समय भी गुजर जाएगा, सब कुछ जल्द ही ठीक होगा।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये भजन जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये छोटी बात नहीं है। कई बार हम इसके लिए दूसरों को आभारी भी मानते हैं, दूसरों को थैंक्स भी कहते हैं, लेकिन कृतज्ञता इससे भी ज्यादा गहरा भाव है। हमें किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम चुनौतियों को भी स्वीकार करें तो बढ़िया होगा। हर एक नया पल एक नया उपहार है, ऐसा मानकर चलिए। कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव जीवन पर हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, कुछ समय बाद दूसरे लोग भी उनमें कम इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो लगातार भागदौड़ वाली जीवन शैली हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना जरूरी नहीं है भाई। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हां हां हां हां कह देना कोई खास फायदेमंद नहीं है भाई। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात लगातार बांधे हुए है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है भाई। भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता हो, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। अगर कुछ है जो लगातार आगे बढ़ने से आपको रोकता है ना, तो उसे तो जरूर छोड़ दीजिए। हो सकता है जो बात दुख दे रही हो वह बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना आसान ना हो, लेकिन आपका आज भी आपके इंतजार में बैठा है। अरे भैया, जो भी चीजें होती हैं उनमें सब कुछ हम काबू नहीं कर सकते। उन चीजों के साथ अपने संबंधों को बदल डालिए।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। एक बार संत ज्ञानेश्वर नदी के तट पर भगवान नाम का जाप कर रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक अन्य संत भी आंखें बंद करके ऊपर वाले का ध्यान कर रहे थे। नदी में स्नान करने के लिए आए एक बच्चे का पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बहने लगा। बच्चा चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे डूबने से बचाओ। ध्यान कर रहे संत ने बच्चे की आवाज सुनी, उसे नदी में बहते देखा और बस पुनः आंखें बंद करके ध्यान में लग गए। संत ज्ञानेश्वर तुरंत नदी में कूद गए। डूबने की परवाह किए बिना वो बच्चे को बचा लाए। संत ज्ञानेश्वर ने ध्यान में बैठे महात्मा से कहा, प्रभु, क्या आपने दर्शन देने आए बाल रूपी भगवान की आवाज नहीं सुनी? भगवान बालक का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, और तुम्हारे हृदय में करुणा भाव है या नहीं? किसी निरीह बच्चे को संकट में देखकर उसकी चीख पुकार सुनकर भी आंखें बंद कर लेना, ध्यान लगाना, क्या पाखंड नहीं है? महात्मा की आंखें खुल गईं। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वो आज से सेवा और सहायता को ही अपना धर्म मानेंगे।

शिव से। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आए। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

महान संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के पास एक वृद्ध सज्जन पहुंचे। वो कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए थे। घर में बैठे बैठे उन्होंने अनुभव किया कि बेटा और बहू उनकी उपेक्षा करने लगे हैं। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, महाराज आप मुझे ऐसे गुरु बताने की कृपा करें कि मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए सम्मानजनक ढंग से जी सकूं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको चार बातें बता देता हूं, उनका पालन करिए तो परिवार में प्रिय बने रहेंगे। वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर मत रहिएगा, कोई ना कोई काम करते रहिए जिससे सभी आपकी उपयोगिता को समझें। कम से कम बोलिएगा, ज्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों क्षीण हो जाते हैं। बिना मांगे सलाह मत दीजिएगा। और चौथी बात यह है कि सहने की आदत डालिए, सहते चलिए। सहनशीलता ही परिवार को साथ रखने का प्रमुख माध्यम है। उस वृद्ध सज्जन ने तत्काल स्वामी जी के इन चारों बातों का पालन करना शुरू कर दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

0: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: यार, आपने कभी सोचा है कि एक गाना सिर्फ 2-3 साजों में ही इतना खूबसूरत क्यों लगता है? उसमें बारिश की बूंदें भी सुनाई देती है, खामोशी भी महसूस होती है, और एक आवाज सीधा दिल के किसी पुराने से कमरे का दरवाजा खोल देती है। और सबसे अजीब बात, कभी कभी हम गाना तो याद रखते हैं, गायक को याद रखते हैं, शायरी याद रखते हैं, लेकिन जिस इंसान ने उस गाने की पूरी दुनिया बनाई उसका नाम भूल जाते हैं। आज की हमारी बातें इधर की उधर की में हम ऐसे ही एक भूले बिसरे नाम को याद करेंगे, एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को जिसके पास बहुत बड़े बजट्स नहीं थे, बड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं था, बड़े दावे नहीं थे, लेकिन म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा दिल था। नाम था कानू रॉय। जी हाँ, कानू रॉय। दोस्तों, मैं हूँ आपके तरानों की हम सफर, आपकी तनुषा, और आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील पे अपना फेवरेट शो बातें इधर की और उधर की। कानू रॉय की कहानी थोड़ी अजीब है, और शायद इसी वजह से वो बहुत खूबसूरत भी है। 1912 में कैलकटा में जन्मे कानू रॉय एक सपना लेकर बॉम्बे आए थे, जैसे कि हम सब जाते हैं कि नहीं। जी हाँ, तो कानू रॉय के सपने पे वापस आते हैं। उनका सपना था प्लेबैक सिंगर बनने का, लेकिन जिंदगी ने कहा, भाई साहब, सिंगिंग का ऑडिशन बाद में लेंगे, पहले स्ट्रगल का कोर्स करो। और कानू रॉय ने वो कोर्स पूरे मन से किया। उन्होंने जिंदगी में छोटे बड़े कई काम किए, ड्राइवर भी रहे, रिपेयर वर्क भी किया, वेडिंग्स में काम भी किया, यहां तक कि हावड़ा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर से जुड़े कामों में भी अपना पसीना बहाया। सोचिए, एक तरफ था म्यूजिक का सपना और दूसरी तरफ हाथ में मेहनत के औजार। लेकिन शायद असली कलाकार वही होता है जिसका सपना उसके हालात से बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कानू रॉय इप्टा से जुड़े, और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े नाम से, सलिल चौधरी जी। जी हाँ, सलिल दा ने उनकी क्षमता पहचानी, और शायद कानू रॉय को भी समझ आ गया कि अगर आवाज प्लेबैक सिंगर की नहीं बन पाई तो क्यों ना वो आवाजों के पीछे की दुनिया बनाए। और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। अब जरा एक सवाल पूछिए, खुद से पूछिए, मुझसे नहीं। आप अपना फेवरेट गाना सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में किसका नाम आता है? सिंगर, ऑफ कोर्स, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी, गीता दत्त मैम, या फिर लिरिसिस्ट का, साहिर जी, गुलजार साहब, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर शायद ही आपके दिमाग में आता है। कभी कभी हम गाना इतना सुन लेते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम जानना जरूरी ही नहीं समझते। और कानू रॉय की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है। उन्होंने ऐसे गाने बनाए जो लोगों ने याद किए, मगर उनका नाम बहुत पीछे छूट गया। 1966 में बासु भट्टाचार्य की फिल्म उसकी कहानी से कानू रॉय को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। बजट बहुत बड़ा नहीं था, ऑफ कोर्स बासु भट्टाचार्य जी की फिल्म है आखिर। आज के जमाने में हम कहेंगे प्रोडक्शन बजट टाइट है, उस जमाने में शायद सिंपली कहा जाता था भाई पैसे नहीं है, बस एक सपना है, सिर्फ कुछ म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्डिंग करनी थी। लेकिन कानू रॉय ने रिसोर्सेस की कमी को क्रिएटिविटी की कमी नहीं बनने दिया। यही तो उस जमाने के लोगों की खासियत थी दोस्तों, उनके सपने बहुत बड़े थे चाहे जेबें बहुत छोटी रही हों। और फिर सामने आए कैफी आजमी के अल्फाज और एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही दिल अपने आप धीमा पड़ जाता है, गीता दत्त जी। कानू रॉय और गीता दत्त जी का रिश्ता बहुत खास था। लोगों ने कभी कभी उन्हें गलती से भाई बहन तक समझ लिया, लेकिन उनका रिश्ता खून का नहीं, संगीत का था। और कभी कभी संगीत के रिश्ते खून के रिश्ते से बहुत गहरे हो जाते हैं। फिर आया 1971, फिल्म थी अनुभव, और गीता दत्त जी की आवाज ने एक बार फिर कानू रॉय जी के सुरों को एक अलग ही रूप दे दिया। सोचिए आज हम गाने को बड़ा बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, बड़े से बड़ा ऑर्केस्ट्रा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लेयर्स, इफेक्ट्स, टेक्नोलॉजी। और कानू रॉय, उन्होंने कभी कभी कम को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी हाँ, जिसको आज हम शायद पॉप कल्चर में जानते हैं लेस इज मोर के नाम से। उस जमाने में कानू रॉय जी ने उस लेस इज मोर को अपने म्यूजिक में जिया। बारिश की बूंदें, एक हल्का सा सांस और गीता दत्त जी की मखमली आवाज, बस। और फिर जो बना वो सिर्फ गाना नहीं रहा, वो माहौल बन गया, वो याद बन गया, वो एहसास बन गया। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ गाने हम सुनते नहीं हैं, बट दिल के बहुत अंदर से महसूस करते हैं। आंखें बंद करते ही कोई पुरानी सी शाम याद आ जाती है, किसी की आवाज याद आ जाती है, कोई पुराना कमरा, खिड़की पर गिरती बारिश या किसी का इंतजार। और कानू रॉय जी का म्यूजिक इसी तरह का था। वो चीखता नहीं था, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता था, वो बस धीरे से आता था और दिल में अपनी जगह बना लेता था। 1973 में आई अभिष्कार और कानू रॉय ने मन्ना डे जी जैसे महान गायक की आवाज का इस्तेमाल किया। गाना था हंसने की चाहत ने कितना मुझे रुलाया है, नाम ही देखिए, हंसने की चाहत और रुला देने वाली जिंदगी। कानू रॉय जी का म्यूजिक भी कुछ ऐसा ही था, बहुत शोर नहीं लेकिन अंदर तक पहुंचने वाली बात, जी हाँ आपकी रूह में उतरने वाली बात। फिर 1975 में आई गृह प्रवेश, जगजीत सिंह और चित्रा जी की आवाजों का इस्तेमाल किया गया और एक पुरानी रचना बाबुल मोरा नेहा छूटो जाए। पुरानी चीज को नया बना देना आसान नहीं होता, उसमें ना तो पुरानेपन को पूरी तरह छोड़ा जा सकता है, ना नए पन के चक्कर में उसकी रूह खत्म की जा सकती है। कानू रॉय ने इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती और गहराई से समझा। और इसीलिए उनका म्यूजिक आज भी सुनने पर एक अजीब सा अपनापन देता है। और एक बात जो मुझे कानू रॉय की कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, उन्होंने सारी जिंदगी बहुत बड़ा नाम बनाने के लिए भागदौड़ नहीं की, ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, ना हर जगह अपना नाम लिखने की कोशिश। वो म्यूजिक बनाते रहे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। 1981 में कैंसर से लड़ते हुए कानू रॉय ने इस दुनिया को छोड़ दिया, बहुत शोर शराबे के बिना, और शायद यही सबसे दुख की बात थी कि जिस इंसान ने इतने लोगों के दिलों में सुर भर दिए, उसके जाने पर दुनिया में उतना शोर ही नहीं हुआ जितना कि वो डिजर्व करते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके जाने के बाद उनका आखिरी एल्बम मयूरी सामने आया और उसमें उनके म्यूजिक को नूतन जी ने भी संभाला और सजाया। सोचिए, एक कलाकार चला गया लेकिन उसकी धुन अभी तक सफर कर रही है। तो आज की बातें इधर की उधर की में एक बहुत छोटा सा सवाल आपके लिए, अगर किसी गाने का सिंगर याद हो, लिरिक्स याद हो, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम ना पता हो, तो क्या हम गाने की कहानी का आधा हिस्सा भूल रहे हैं? और एक और सवाल, क्या कलाकार की सफलता सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी से मापी जाती है या फिर उस एहसास से जो उसके बनाए हुए म्यूजिक ने एक इंसान के दिल में पैदा किए? कानू रॉय शायद हर घर का एक जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए सुर शायद हमारे घरों में हमसे बहुत पहले पहुंच चुके थे। और यही तो है कला की अजीब सी खूबसूरती, कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला कभी नहीं रुकती। तो अगली बार जब आप कोई पुराना गीत चलाएं, सिर्फ ये मत पूछेगा ये किसने गाया, एक बार ये भी पूछना इस खूबसूरत एहसास को बनाया किसने था। हो सकता है उसके जवाब में आपको कानू रॉय जैसे और नाम मिल जाएं, जो दुनिया की नजरों से भले ही दूर रहे मगर हमारी यादों के म्यूजिक प्लेयर में अब भी चुपचाप बज रहे हैं। मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। अगली बार जब कोई भूला बिसरा गीत मिले, मेरी ये बात याद कीजिएगा और उसे सिर्फ सुनिएगा नहीं, उसके पीछे छुपे हुए कलाकार को याद कीजिएगा, क्योंकि कुछ नाम मशहूर होने के लिए नहीं, याद रखे जाने के लिए बने होते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: संता ने कहा, हे भाई बंता, कहाँ हो? बंता ने कहा, भूख लग रही थी भाई, होटल में हूँ, खाना खा रहा हूँ। बंता ने फिर पूछा, अच्छा तू कहाँ है संते? संता ने कहा, लंगर की लाइन में खड़ा हूँ, तुम्हारे पीछे ही हूँ, आगे बढ़ो तो जरा खीर मेरे लिए भी ले लेना।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। और आज की बात थोड़ी आसमानी है, थोड़ी प्लैनेट्स की है और थोड़ी सी जमीन से जुड़ी हुई है। आज बात होगी प्लैनेट्स की। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुंडली, ग्रह, ग्रहण, राशियां, पंडित जी मेरी शादी कब होगी, पंडित जी मेरी जॉब कब लगेगी, पंडित जी पैसा कब आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, पंडित जी ये शनि मुझसे इतना नाराज क्यों है। लेकिन आज का थॉट थोड़ा अलग है। एक सिंपल सी लाइन है, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्लैनेट्स, फिक्स योरसेल्फ। मतलब हर बार आसमान में प्रॉब्लम नहीं ढूंढिए, कभी कभी जरा अपने अंदर भी देखिए। एक बात पहले ही क्लियर कर रही हूं, एस्ट्रोलॉजी को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं। साइंस और ज्योतिष एक ही चीज नहीं है, और आज हम इसे प्रिडिक्शन के रूप में नहीं, एक सोच, एक परंपरा और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के तरीके से देखेंगे। क्योंकि अगर प्लैनेट्स के नाम से हमें अपनी आदतों की तरफ देखने का मौका मिल रहा है तो इतनी बुरी बात भी नहीं है, है ना? चलिए शुरू करते हैं वीनस से। वीनस यानी शुक्र। वीनस को पारंपरिक ज्योतिष में प्रेम, सुंदरता, सुख और संबंधों से जोड़ा जाता है। एक सिंपल मैसेज है, अच्छे और साफ कपड़े पहनो, अपने आप को संभालो। अब सुनने में लगता है बस वीनस को खुश करने के लिए वार्डरोब चेंज करनी होगी, लेकिन जरा दूसरे एंगल से देखिए, हम सबके साथ होता है। ऑफिस जाना हो तो शर्ट आयरन, शादी में जाना हो तो परफ्यूम, इंटरव्यू में जाना हो तो शूज पॉलिश, लेकिन घर में पुरानी फटोड़ी टी शर्ट, एक चप्पल इधर एक उधर, और बाल कह रहे हैं हम आजाद हैं। पॉइंट कपड़ों का है ही नहीं, पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, कभी कभी खुद के लिए भी तैयार होके देखिए। सुबह नहाकर, साफ कपड़े पहनकर, बाल ठीक करके जब आप मिरर में खुद को देखेंगे तो दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल मिलता है, भाई आज हम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीनस का लेसन अगर प्रैक्टिकल बना दें तो बस इतना सा है, खुद की केयर कीजिए। अब आते हैं सन यानी सूर्य पर। हर वक्त सबके लिए अवेलेबल मत रहिए, क्या बात है। इस लाइन को तो व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाना चाहिए, हम में से कितने लोग हैं जो फोन पर आर यू फ्री ये देखते ही झट से बोल पड़ते हैं हाँ बोलो, और फिर सामने वाला बोलता है एक छोटा सा काम था, और वो छोटा सा काम आपकी पूरी शाम खा जाता है। कभी नोटिस किया है, जो इंसान हर वक्त अवेलेबल होता है लोग अक्सर उसके वक्त की वैल्यू कम कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाइए, मदद करना बंद मत करिए, बिल्कुल नहीं, बस एक हेल्दी बाउंड्री रखिए। हर कॉल तुरंत उठाना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई भी जरूरी नहीं है, हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना देना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है।

दिन बात कर लें और चौथे दिन वो गुड मॉर्निंग ना भेजे, तो हम सारे सिनेरियोज इमेजिन कर लेते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने मेरा मैसेज देखा क्यों नहीं? लास्ट सीन तो कल का है, रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे नाराज है? और फिर दिमाग नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा स्टोरीज बना लेता है उसे एक सेकंड में। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि इमोशंस ही मत रखिए, फील कीजिए, प्यार कीजिए, केयर भी कीजिए, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के बिहेवियर के हवाले मत कीजिए। किसी का रिप्लाई आए तो खुश, रिप्लाई नहीं आए तो दुखी। किसी ने तारीफ की तो कॉन्फिडेंस हाई, और किसी ने इग्नोर किया तो कॉन्फिडेंस जीरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल रखिए, रिमोट कंट्रोल नहीं। अपने पास दिल रखिए, एक रिमोट कंट्रोल नहीं। अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब आते हैं मार्स यानी मंगल की। कीप योर बॉडी फिट। जी हाँ, इसमें तो प्लैनेट से ज्यादा डॉक्टर साहब अग्री करेंगे। हम सबके पास एक यूनिवर्सल एक्सक्यूज होता है, अभी टाइम नहीं है, अभी शेड्यूल टाइट है, अभी मन नहीं कर रहा, कल से एक्सरसाइज शुरू। कल आता है, फिर कहते हैं मंडे से, मंडे भी आ जाता है, फिर कहते हैं नेक्स्ट मंडे से प्रॉपर, और एक दिन फिर से न्यू ईयर आ जाता है। इस साल तो पक्का। बॉडी को फिट रखना सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है दोस्तों, आपका मूड, आपकी एनर्जी, स्लीप, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके मूवमेंट का असर है। जिम जाना जरूरी नहीं है, वॉक कर लीजिए, सीढ़ियां चढ़ लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, डांस कर लीजिए, घर की सफाई करते हुए भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो मंगल का प्रैक्टिकल लेसन, बॉडी को इग्नोर करके माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना मुश्किल है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की और इसका मैसेज। लोगों के बीच जरूरत से ज्यादा मत बोलो, ये तो बहुत डेंजरस एडवाइस है, खास करके उन लोगों के लिए जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 6 बजे एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी हम बोलते बहुत हैं, लेकिन सुनते तो भाई बिल्कुल नहीं। हर बात में हमारा ओपिनियन है, हर डिस्कशन में हमारी एंट्री है, हर कहानी में अपना एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा इरिटेटिंग और कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी दोस्तों। किसी ने कहा मुझे कल बहुत थकान थी, और हम झट से कह देते हैं अरे मुझे भी 2017 में बहुत थकान थी। और फिर उनकी थकान की कहानी गई काम से और आपकी ऑटोबायोग्राफी शुरू। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी कम्युनिकेशन है। कभी सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए, सेंटेंस खत्म करने दीजिए। हर साइलेंस को वर्ड से भरना जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बात बोलना भी जरूरी नहीं है। कुछ बातें सोचने के लिए होती हैं, कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, और कुछ बातें बिल्कुल नहीं बोलने के लिए होती हैं। कम नहीं बोलना, लेकिन समझ कर बोलना है, जरूरत पे बोलना है। अब आते हैं जुपिटर पर, एक और फेवरेट प्लैनेट। हर किसी को फ्री एडवाइस मत दीजिए। इंडिया में इस एडवाइस की सबसे ज्यादा जरूरत शायद हम सबको है। किसी की शादी नहीं हुई, एडवाइस, शादी हो गई, एडवाइस, बच्चा हुआ, एडवाइस, बच्चा नहीं हुआ, एडवाइस, जॉब चेंज की, एडवाइस, जॉब चेंज नहीं की, उसकी भी एडवाइस। और सबसे खास बात, एडवाइस मांगी भी नहीं गई होती है, फिर भी हम बोलते हैं मैं तुम्हारी जगह होता ना, भाई तुम मेरी जगह हो ही नहीं। हर इंसान की सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके डिसीजंस को शेप करते हैं। कभी कभी सामने वाले को सल्यूशन नहीं, सिर्फ एक एक्टिव लिसनर चाहिए।

इसीलिए नेक्स्ट टाइम कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो तुरंत मेरे हिसाब से मत शुरू कीजिए, पहले पूछिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बस सुनूं या तुम्हें मेरी राय भी चाहिए। कितनी सिंपल लाइन है और कितने आर्ग्यूमेंट्स बचा सकती है। और फाइनली सैटर्न, शनि, ओ माय गॉड, बोलते ही डर लग रहा है, बट इसका मैसेज बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, मेंटेन डिसिप्लिन इन लाइफ। अब यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। शनि जी का लेसन बहुत सिंपल है, कड़क है, बट बहुत डिफिकल्ट है मानना। एक रूटीन, मेहनत, सबर, कंसिस्टेंसी, हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट फ्राइडे को, मेहनत मंडे को भी नहीं करनी, वेट कम हो लेकिन समोसा भी चाहिए, पैसे बढ़े लेकिन बजट बनाना बोरिंग लगता है, बुक लिखनी है लेकिन फोन छोड़ना मुश्किल है, हेल्दी रहना है लेकिन रात को 2 बजे तक रील्स भी चलानी है। लाइफ से हम कह रहे हैं रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट प्लीज, और लाइफ पूछती है, इनफैक्ट सैटर्न पूछता है, एफर्ट एफर्ट एफर्ट एफर्ट, और हम सीन सीन सीन सीन करके आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन निकलता जाता है और शनि आपके पीछे पीछे चलता जाता है आपको लेसन्स देता हुआ। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो करो और तभी करो जब उसका समय है, चाहे आपका मन हो या नहीं। तो दोस्तों, वीनस ने कहा खुद का ख्याल रखो, सूर्य ने कहा हर वक्त अवेलेबल मत रहो, मून ने कहा हर किसी को अपनी दुनिया मत बनाओ, मार्स ने कहा बॉडी को फिट रखो, मर्क्यूरी ने कहा जरूरत से ज्यादा मत बोलो, जुपिटर ने कहा हर किसी को फ्री में एडवाइस मत दो, और सैटर्न ने कहा डिसिप्लिन रखो। अब एक बार सोचिए इनमें से सबसे मुश्किल कौन सा है? खुद का ख्याल रखना, बाउंड्रीज बनाना, इमोशंस को संभालना, एक्सरसाइज करना, कम बोलना, एडवाइस कम देना या डिसिप्लिन? शायद प्लैनेट कोई भी हो, असली काम तो हमारा है दोस्तों, क्योंकि अगर हम हर प्रॉब्लम का रीजन आसमान में ढूंढते रहेंगे तो जमीन पर जो चीजें हम बदल सकते हैं वो वैसे ही रह जाएंगी। अगली बार जब कोई कहे तुम्हारी कुंडली में इस प्लैनेट की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, आप एक बार खुद से पूछना मेरी आदतों में कहां प्रॉब्लम है और उसे ठीक करने की कोशिश करना। प्लैनेट्स को हम कंट्रोल करें या ना करें, लेकिन हमारी आदतें अपनी हैं, अपनी जुबान है, अपनी बाउंड्रीज हैं, अपना रूटीन है, अपनी बॉडी है, अपना बिहेवियर है, इन पर तो बिल्कुल काम किया जा सकता है, और यही सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है आपके प्लैनेट्स के लिए। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। याद रखिए, आसमान को देखना अच्छी बात है लेकिन कभी कभी अपने पैरों के नीचे की जमीन भी देख लीजिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, कम उलझिए, थोड़ा मुस्कुराइए, और हाँ, फ्री एडवाइस देने से पहले आज की बातें इधर की उधर की याद कर लीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ कि सेमेस्टर सिस्टम का क्या फायदा है? एक बच्चे ने कहा, फायदा तो पता नहीं, लेकिन साल में दो बार बेइज्जती जरूर हो जाती है।

अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है, तो जवाब क्या होगा? मम्मा, पापा, कोई दोस्त, कोई लाइफ पार्टनर, या कोई मेंटर, या फिर आपका खुद से रिश्ता? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों इंसान नहीं है, एक है अर्थ, जी हाँ हमारी पृथ्वी, और दूसरा जुपिटर, जी हाँ गुरु प्लैनेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं आज की ये एकदम ताजा बातें इधर की उधर की। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम की दुनिया बहुत अजीब है और उस दुनिया में भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बस इनमें व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज नहीं होते, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना लास्ट सीन जोन। अच्छी बात है ना, काश हमारे भी ऐसे ही होते। खैर, अर्थ और जुपिटर लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स से एक ही सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और जुपिटर सिर्फ बड़ा नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जी हाँ, सबसे बड़ा, इतना बड़ा कि उसके अंदर लगभग 1300 अर्थ्स के बराबर वॉल्यूम आ सकता है, और इसीलिए हमारे लिए जुपिटर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी रात में आसमान को देखा है? कितनी शांत लगती है वो दुनिया, है ना? तारे हैं, ग्रह हैं, चांद है, सब कुछ बिल्कुल सुंदर है। लेकिन असल में स्पेस बहुत शांत जगह नहीं है, वहां हर वक्त कुछ ना कुछ घूम रहा है, और सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में ये सब और भी ज्यादा था। अब यहाँ जुपिटर का रोल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी बहुत पावरफुल है, और उसकी ग्रेविटी कई एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है, कभी किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी डायरेक्शन में भेज सकती है, कभी उसकी ऑर्बिट बदल सकती है, और कभी वो ऑब्जेक्ट जुपिटर से टकरा भी सकता है। यानी जुपिटर सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल प्लेयर है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये कहना कि जुपिटर अर्थ को हर एस्ट्रॉइड से बचाता है, साइंटिफिकली तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। कभी जुपिटर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर करने में मदद कर सकता है, लेकिन कभी उसकी ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ भेज भी सकती है। तो जुपिटर कोई कॉस्मिक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है कि साइंटिस्ट सोलर सिस्टम में उसके डायनेमिक्स के रोल को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, और इसी वजह से जुपिटर देखते हुए एक बहुत खूबसूरत मेटाफर सामने आता है, प्रोटेक्शन का। जी हाँ, प्रोटेक्शन का। अब जरा इसे ह्यूमन लाइफ से जोड़िए। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व नहीं करते, वो हमारे लिए एग्जाम खुद नहीं दे सकते, वो हमारे लिए जॉब इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, हमारी शादी के डिसीजंस नहीं ले सकते, हमारी गलतियों को हमसे छीन नहीं सकते। लेकिन लेकिन लेकिन जब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वो एक बात कहते हैं, रुक। जब हम किसी गलत इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं वो पूछते हैं, तुम सच में खुश हो? जब हम हार के बाद सब छोड़ देना चाहते हैं वो कहते हैं, एक बार और ट्राई करो। और कभी कभी वो कुछ भी नहीं करते, वो बस हमें याद दिलाते हैं कि हम हार सकते हैं, कि हम कर सकते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? कभी मम्मा, कभी पापा, कभी कोई टीचर, कभी कोई दोस्त, कभी कोई सीनियर, कभी कोई कॉलीग, और कभी एक ऐसा इंसान जिससे हमने जिंदगी में सिर्फ कुछ महीने ही जाना हो, लेकिन उसकी बात, उसकी वो एक बात सालों तक याद रहती है,
और यहीं आता है एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, क्या किसी को गाइड करने के लिए उसकी जिंदगी कंट्रोल करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा गाइड आपको अपने पैरों पर चलना सिखाता है। आपकी जगह चल नहीं सकता, वो आपके डिसीजंस नहीं चुराता, वो आपको डिसीजन लेने लायक बनाता है। और शायद इसीलिए हमारे पारंपरिक विचारों में जुपिटर को गुरु से जोड़ा गया है। गुरु का मतलब सिर्फ क्लासरूम वाला टीचर नहीं है, गुरु का अर्थ है जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। और ये रोल किसी एक प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है। कोई प्रोफेसर आपका गुरु हो सकता है, कोई म्यूजिशियन, कोई राइटर, कोई एल्डर, कोई पेरेंट, कोई कोच, या फिर लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अंदर से बदल दे। लेकिन यहाँ एक और फनी बात है, हम अक्सर गाइडेंस तब मांगते हैं जब प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होती है। पहले डिसीजन मैं कर रहा हूँ, फिर गलती, फिर पैनिक और फिर फोन। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है और सामने वाला, मैंने पहले ही कहा था, ये दुनिया का सबसे फेमस सेंटेंस है, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन सच ये है कि कभी कभी हम गाइडेंस सुनते हुए भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम सबको अपनी लाइफ का हीरो बनना होता है और हीरो को लगता है मुझे तो सब पता है। लेकिन मैच्योरिटी शायद तब आती है जब हम कह पाते हैं मुझे सब नहीं पता। जी हाँ, सब नहीं पता। और उसके बाद किसी से सीखने की जगह बनती है, वो स्पेस क्रिएट होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो मन में एक नाम लीजिए, ऐसा कोई इंसान जिसने कभी आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरह बेटर बनाया। शायद उसने आपको कोई स्किल सिखाई, शायद किसी मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ा, शायद आपको किसी गलत डिसीजन से भी रोका, या शायद उसने सिर्फ इतना कहा मैं हूं, तुम ट्राई तो करो। बस एक नाम याद कीजिए और अब सोचिए, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता तो क्या आप आज भी वही होते जो आप हैं? शायद हाँ या शायद नहीं, लेकिन कुछ तो बदला होगा उसके होने से। और इसी को कहते हैं डायरेक्शन। जुपिटर हमें एक और इंटरेस्टिंग बात सिखाता है, हर बड़ी चीज का इम्पैक्ट हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी कोई चीजें अपनी जगह बनी रहती हैं और उसकी प्रेजेंस बहुत कुछ बदल देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो रोज आपको एडवाइस नहीं देते, रोज फोन भी नहीं करते, हर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते, लेकिन आपको पता होता है कि अगर बुरा वक्त आया तो मैं इन्हें कॉल कर सकती हूँ। क्या खूबसूरत फीलिंग है ना, किसी का आपकी लाइफ में होना और उसका सिर्फ होना एक सेफ्टी नेट जैसा लगना। और दोस्तों शायद इसीलिए हमें सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को थैंक नहीं करना चाहिए, हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने हमें गलत रास्ते से वापस लाया हो, जिन्होंने हमारी हार में भी हमारा मजाक नहीं बनाया, जिन्होंने हमेशा कहा चलो फिर से शुरू करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों को जिन्होंने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। क्योंकि असली गाइडेंस वो नहीं है जो आपको हमेशा अपने पीछे चलाए, असली गाइडेंस तो वो है जो एक दिन कह दे अब तुम कर सकते हो। तो आज की बातें इधर की उधर की का थॉट बहुत सिंपल है, आसमान में जुपिटर अपनी जगह बनाकर सोलर सिस्टम के मूवमेंट्स को प्रभावित तो करता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग बस अपनी प्रेजेंस से, अपनी बातों के एक्सपीरियंस से हमारी डायरेक्शन बदल देते हैं। हो सकता है उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हो, लेकिन उन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता जरूर दिखाया हो। और कभी कभी रास्ता दिखाना चलने से ज्यादा बड़ी मदद होती है। तो आज अपनी लाइफ के उस एक इंसान को याद कीजिए
जिसने आपको कभी संभाला, कभी आपको कुछ सिखाया और कभी आपको अपनी ही नजरों में थोड़ा बेटर बना दिया। और अगर मौका मिले तो उन्हें एक सिंपल सा मैसेज कर दीजिए आज, थैंक यू, आपकी वो एक बात आज भी मेरे काम आती है। हो सकता है उनके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन आपकी जिंदगी में वही बात एक टर्निंग पॉइंट बन गई। मैं हूं आपकी आरजे, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। याद रखिए दोस्तों, हर सफर में हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला मिलता जरूर है, बस फर्क ये है कुछ लोग सामने होते हैं और कुछ दूर रहकर भी हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। मिलते हैं अगली बातें इधर की उधर की में, तब तक सीखते रहिए, संभालते रहिए, और जिन्होंने आपको संभाला है उन्हें भूलिएगा मत, वो आपके जुपिटर हैं। जी हाँ, नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति ने कहा, जज साहब मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए, वो मुझे बर्तन फेंक फेंक के मारती है। जज ने कहा, वो अभी से मार रही है या पहले से मारती थी? आदमी ने कहा, सर वो बहुत पहले से मारती थी। जज ने कहा, तो अब क्यों तलाक चाहिए? आदमी ने कहा, अब उसका निशाना पक्का हो गया है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन

0: तरह की। इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तो इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो

अर्जुन के सच्चे सपूतो उठो, और कलयुग में सतयुग के दूतो उठो, कंस का राज जग से

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रंजीला और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM।

0: हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है।
1: हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं।
0: मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें

0: नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं।
1: एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मान सिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है।
0: ये आप कैसे कह सकते हैं कि मान सिंह बीरबल जितने होशियार नहीं है? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मान सिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए।
1: ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे, और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मान सिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे।
0: ईरान? पर क्यों?
1: उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं, शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर। हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम आपका मान जरूर रखेंगे।
3: हमें कब निकलना होगा हुजूर?
1: हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं, शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें।
2: जैसी आपकी मर्जी जहांपनाह। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मान सिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं।
4: हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मान सिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं।

0: हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश,
1: शाबाश बीरबल।
2: दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: हुजूर, ईरान का एक सौदागर है जिसे कोई शिकायत है और आपसे मिलना चाहता है।
1: ठीक है मान सिंह जी, उसे इजाजत है।
2: शमशेर सिंह, दरबार में पेश हो।
3: आदाब हुजूर।
1: खुश आमदीद, सुना है आप ईरान से हमारे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा।
4: माफ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लगना तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ आकर बर्बाद हो गया हूँ।
1: बर्बाद? कैसे और क्यों? कहिए क्या समस्या है?
4: हुजूर, मैं ईरान से व्यापार के लिए कुछ सामान लाया था जिनकी कीमत 500 सोने की अशर्फियां थी, कुछ शानदार ऊन के कपड़े और कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने।
1: तो समस्या क्या है? क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी सौदागर मोल भाव करने में माहिर होते हैं।
4: नहीं हुजूर, समस्या ये नहीं है। मैं ईरान से जब यहाँ आ रहा था, तब सफर के दौरान मैं एक हिंदुस्तानी व्यापारी से मिला। उसने मुझे अपना सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो अपना सारा सामान बेच कर लौट रहा था।
1: ठीक है, फिर?
4: हुजूर, जब हम आगरा पहुंचे तो उसने मेरा सामान वापस करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सामान उसका है। अब मैं अपना बस बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत जो सामान है उसे बेचकर ही वापस घर लौट सकूंगा। अगर मेरा सामान ना मिला हुजूर, तो मैं अब कभी भी व्यापार नहीं कर पाऊंगा।
1: अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई। पर घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए कौन है वो व्यापारी? आप जानते हैं वो कहाँ रहता है?
4: जी हुजूर, उसका नाम दिलावर है और मैं उसका पता जानता हूँ।
1: सिपाहियों, फौरन इस पते पर जाओ और उस दिलावर को हमारे सामने पेश करो।
2: आदाब हुजूर।
1: बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो?
2: जी हुजूर, मैं इसे जानता हूँ, ये शमशेर सिंह है, ईरान से।
1: ओह, तो तुम इसे जानते हो। बताओ तुमने इसके साथ बेईमानी क्यों की?
2: माफ कीजिएगा हुजूर, पर ये सच नहीं है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। वो सामान मेरा अपना था, जब मैं ईरान से लौट रहा था तब ये मेरे पास आया और मेरे साथ हिंदुस्तान आने की गुजारिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखना चाहता था और इसे रास्ता मालूम नहीं था। मैं वैसे भी ईरान से सामान खरीद कर लौट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं।
4: नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है, इसके पास कोई सामान नहीं था। मुझे इसने कहा कि ये अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और मुझे अपने गधे कम किराए में देने लगा, ये कहते हुए कि मेरी बचत हो जाएगी और इसे भी लौटने के लिए पैसे मिल जाएंगे।
2: नहीं, ये सरासर झूठ है हुजूर, मैंने सिर्फ इसे अपने साथ सफर में लिया था, सामान मेरा अपना है। जब हम आगरा पहुँचे तो ये मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत करेगा।
1: बहुत हो चुका, बस करो। शमशेर सिंह, अगर वो सारा सामान आपका है तो आप अपने सामान को पहचान पाएंगे, ठीक है? और अगर दिलावर सच बोल रहा है तो आप अपने सामान को नहीं पहचान पाएंगे।
4: जी हाँ हुजूर।
2: नहीं हुजूर।
1: क्या मतलब? तुम इन्हें अपने सामान की पहचान क्यों नहीं करने देते?
2: हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में काफी दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया था, तब तो ये आसानी से पहचान सकता है मेरे सामान को।
4: नहीं हुजूर, ये उल्टी बात कर रहा है, इसने मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सामान दिखा दिया।
2: हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, आप मेरे नौकर से भी पूछ लीजिए जो मेरे साथ था, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा।
4: नहीं नहीं हुजूर, इसका नौकर भी झूठ बोलेगा, इसने उसे भी अपनी साजिश में शामिल किया होगा। हुजूर, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं।
1: बीरबल, मेरे ख्याल से अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो और असली मुजरिम की पहचान कर सकते हो।
5: जी हुजूर, मुझे यकीन है मैं असली मुजरिम को जरूर पहचान सकता हूँ।
1: तो फिर देर किस बात की है, ये मामला जल्द से जल्द सुलझाओ।
5: जी हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, एक या दो दिनों में मुजरिम आपके सामने होगा, मुझे पूरा यकीन है।
1: ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो फिर हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह, आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर ध्यान रहे, अगर आप मुजरिम साबित हुए तो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, कैद खाने में।
4: मैं समझ सकता हूँ हुजूर।
1: और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दिलावर, तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता।
2: जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने सिर्फ सच ही कहा है।
1: बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इन दोनों में से मुजरिम कौन है ये साबित कर दिखाओगे।
5: जी हाँ, शुक्रिया जहाँपना, मुझे यकीन है कि एक या दो दिनों में मामला सुलझ जाएगा।

0: कहाँ है बीरबल? वो अब तक दरबार में नहीं पहुँचा।
1: आदाब हुजूर।
0: बीरबल, कहाँ थे तुम? और शमशेर सिंह के मसले का क्या हल निकला? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया?
1: जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है और ये साबित भी कर सकता हूँ।
0: ओह, बहुत खूब, शाबाश। तो बताओ, फौरन बताओ, कौन झूठा है?
1: जी जापना, दिलावर झूठा है और बेईमान भी, और शमशेर सिंह सच बोल रहा है।
0: दिलावर? हम तो समझे थे कि वो सच बोल रहा था। आखिरकार वो आगरे का व्यापारी है और उसकी अपनी दुकान है, तो वो क्यों बेईमानी करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है? आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला?
1: हुजूर, कल शाम की बात है, मैं और मानसिंह जी दिलावर के दुकान पर गए। उसके नौकर को दुकान छोड़ जाते हुए देख हमने एक ढाबे तक उसका पीछा किया।
2: आइए, कहिए क्या खाएंगे आप? काफी लंबा सफर करके आए हैं। आगरा पहली बार आए हैं क्या आप?
1: जी, मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ। दरअसल हम यहाँ कुछ ईरानी कारीगरी का सामान खरीदने आए हैं, वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए।

0: एक व्यापारी से मिला ढाबे पे, जो ईरानी सामान खरीदना चाहता है।
1: ओह शाबाश, बहुत खूब। कहाँ है वो?
0: वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाऊं?
1: जरूर, जल्दी आइए आइए।
2: पता चला है कि आप ईरानी सामान बेचते हैं।
1: जी जरूर, इत्तेफाक से मैं हाल ही में ईरान से खरीदी करके लौटा हूँ।
2: क्या आप हमें वो सामान दिखा सकते हैं?
1: बिल्कुल, सारा सामान लेकर आओ।
2: अच्छा, तो आप इन चीजों का क्या दाम लगाएंगे?
1: आप सारा सामान खरीद लेंगे? तब मैं सारे सामान का दाम 1000 सोने की मोहरे लगाऊंगा।
2: हम दोनों को ये नहीं लगता कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। इससे भी बढ़िया सामान देखा है। हम सिर्फ इसकी आधी कीमत दे सकते हैं, सिर्फ 500 सोने की मोहरे।
1: आधी कीमत? बेहतरीन किस्म का नहीं है?
2: दरअसल मेरे दोस्त को इन चीजों में कुछ खराबी नजर आ रही है। अब हम इसके लिए सिर्फ 300 सोने की मोहरे ही देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है।
1: ठीक है, 300 मोहरे ही सही।
2: ठीक है, सौदा पक्का। हम कल सवेरे पैसों के साथ आएंगे और ये सारा सामान ले जाएंगे।
3: हम समझे नहीं बीरबल, तो इससे दिलावर झूठा कैसे साबित हुआ?
2: हुजूर, कोई सौदागर इतनी जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा, या फिर कम कीमत लेने को इतनी जल्दी क्यों तैयार होगा? मैं तभी समझ गया कि ये सामान दिलावर का नहीं है और इसीलिए वो कोई भी कीमत लेने को तैयार था।
3: तुम ठीक कह रहे हो।
2: जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, हमने इसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर उससे सच्चाई उगलवाई और अब वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है।
3: शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें एक शरीफ आदमी को जिसने तुम्हारी मदद की उसे धोखा देते हुए शर्मानी चाहिए। हम तुम्हें साल भर कैद की सजा देते हैं और शमशेर सिंह को बुरी तरह परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना तुम्हें उन्हें 500 सोने की मोहरें अदा करनी पड़ेगी। सिपाहियों, दूर ले जाओ इस शख्स को हमारी नजरों से।
0: शुक्रिया हुजूर।
3: शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने दिलावर की बेईमानी अपने लाजवाब अंदाज में साबित की।
4: दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: जी कौन है आप और आपको क्या चाहिए?
1: मैं गंगू, मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ।
0: लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते?
1: नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए, यह आदमी एक चोर और झूठा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें आज ये मामला सुलझाने दीजिए।
0: ठीक है मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं, आप यहीं ठहरिए। हुजूर, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं।
2: ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ।
0: अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे।
2: हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा, कौन हो सकता है ये?
0: आदाब।
2: आदाब हुजूर, आपने मुझे बुलवा दिया हो, अगर कुछ काम था तो?
3: नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं।
4: आदाब हुजूर,
3: ये कौन है बीरबल?
2: मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर, इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा।
3: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूँ, शुरू करो।
2: हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है?
1: जहाँ पना हुजूर, मैं गंगू तेली हूँ, मैं तेल बेचता हूँ, मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था, ये लच्छूराम कसाई है, इसने मुझे अंदर बुलाया।
5: ए तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो।
1: जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको?
5: सोचने दो, मुझे एक माप दे दो।
1: जनाब ये लीजिए, 2 रुपए हुए जनाब।
5: 2 रुपए? ये तो ज्यादा है, तुम तो बेईमानी कर रहे हो।
1: जनाब तेल महंगा हो गया है, मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है, मैं आपको ठग नहीं रहा, आप किसी से भी पूछ लें।
5: खैर सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर ये लो पैसे, एक चांदी का सिक्का है, अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर, क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना, क्या ख्याल है?
1: अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं।
5: झूठे, ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो।
1: तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं, अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं।
2: तुम्हें क्या कहना है इस बारे में?
5: जनाब ये आदमी एक झूठा और चोर है, दरअसल बात कुछ ऐसी थी।
1: जनाब क्या आपको तेल चाहिए?
5: नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है।
1: जनाब आज मेरी बोनी तक नहीं हुई, एक नाप ले लीजिए मुझसे, एक नाप।
5: देखो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है।
1: जनाब मैं आपको छूट दूंगा, जनाब एक नाप ले लीजिए।
5: ठीक है मुझे एक माप दे दो।
1: शुक्रिया जनाब, 2 रुपए हुए इसके।
5: ठीक है, ये लो पैसे।
1: जनाब क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ, सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ।
5: ठीक है पर जल्दी करो, हाथ मुंह वहां धो लो। ए ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का, मेरे पैसे वापस करो।
1: नहीं ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा थैला है।
5: तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया, मेरे पैसे चुराए?
1: तुम मुझे लूटना चाहते हो, ये मेरे पैसे हैं और मैं

0: मैं नहीं दूंगा।
1: लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर, आप ही मेरी मदद करें हुजूर।
0: नहीं जनाब, ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
2: ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे?
3: हुजूर, इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर, पर आप गलत थे, एक गवाह है इस बात का।
0: हुजूर, आपकी गलत फहमी है, जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहाँ कोई नहीं था।
3: नहीं, तुम गलत हो, एक गवाह मौजूद था, वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है।
2: बीरबल,

0: गंगाराम हाजिर हो।
1: आदाब जहां अपना।
2: क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है?
3: जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा।
2: क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो, या तुम्हें वहाँ की ठंड का अंदाजा नहीं?
3: जापाना, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा।
2: हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। ये आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के?
4: वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले।
0: गंगाराम हाजिर हो।
3: आदाब जापाना।
2: तो कहो, कैसी रही रात?
3: हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई।
2: तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता।
3: ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह है।
2: सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी?
5: जी हाँ जापाना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी।
2: हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, कैसे किया तुमने ये? सारी रात क्या किया वक्त बिताने के लिए?
3: हुजूर, शुरू में तो बहुत मुश्किल था, ठंड के मारे मैं अकड़ गया था। फिर तालाब के किनारे एक दीव को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी।
2: आहा, अच्छा तो ये राज है। तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी, इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता।
3: पर जापाना,
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ।
3: पर जापाना,
2: बस बहुत हो चुका, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी, आप गलत साबित हुए।
4: आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
2: कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे, क्या आपके पास कोई सुझाव है?
4: माफी चाहता हूँ हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा।
2: जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं, पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहाँ है? क्या वो लौटे नहीं?
4: नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए?
2: हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुँचने को कहिए, तब तक आप बाकी कार्यवाही कर सकते हैं।
4: जापना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी।
5: आदाब जापना, बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
2: आज बीरबल को हो क्या गया है? इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहाँ है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना?
5: हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
2: हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे।

0: क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और ये सब माजरा क्या है?
1: हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है। मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, अफसोस अब तक बनी नहीं है।
0: बीरबल, आप ठीक तो हैं? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी?
1: हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है।
0: बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुंचेगी?
1: जहां पना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अच्छा अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा।
2: शुक्रिया हुजूर।
0: और ये आपके लिए बीरबल, एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश।
3: राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह।
1: शुक्रिया हुजूर।

दोस्तों, आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी,
2: और डॉक्टर साहब, एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
2: बताइए।
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी, रात की 10 बजे से 2 बजे तक प्रवाह ज्यादा,
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
7: નમસ્કાર કિસાન સાથીઓ,
6: कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है। यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में

0: हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तीन प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
1: नमस्कार,
0: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
2: नमस्कार,
0: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
3: नमस्कार।
0: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है, ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
5: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
1: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
6: जी जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
0: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज, वो कितना है या इस पर?
2: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की, वो बढ़ती जा रही है
0: जी।
2: वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है, ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
1: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है
0: जी,
1: और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है, उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है, और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है।
0: डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है?
6: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है
0: जी।
6: तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में, वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सब का हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
2: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो उससे हमारे में कैंसर और गोइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करे, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका इस जेल का प्रयोग किया जाता है।
1: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक की पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है, साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
2: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा जैसे दिनेश जी ने बताया ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
0: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है, बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनका, जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान है वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: जी बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि 4-2-1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक है इनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बढ़वार हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर कीटनाशकों का रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, यानी ये समस्या है। इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4-2-1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
0: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे विवेकपूर्ण इस्तेमाल करे किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
6: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4-2-1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी? वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें, तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
5: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये

0: हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें. तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है. उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट. ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है. तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
1: पट्टियां
0: बनी है. तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है. अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है पीलेपन में आ रहा है उसका हरा रंग कम आ रहा है तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे. अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा, और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे. तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं. ये मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए. लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं. तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा.
1: बिल्कुल. और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर. कहना यह भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा. तो पहले तो हमें यह बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है.
2: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है. कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं. तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है. इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है. इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है. मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए. तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है, और किसानों
1: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है.
3: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में है, नाइट्रेट के रूप में. तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार किए कि ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की और जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर भाटिया, इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। तो नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारे सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
1: कदम उठाया गया है। किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
2: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है। और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पे निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
2: जी बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है, जल में विलेय फर्टिलाइजर है, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
1: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें बताएं।
3: जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरक पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है, तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
0: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं, इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं, तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा, वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट, जो कि कह रहे हैं ना सूखा, जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है, तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे, उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है, ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे, जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट है इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
2: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है, और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपके अनाज वाली फसलें, धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं, और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में, उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं, जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं, इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है, उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं, ये धीरे धीरे हमारी मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं?
3: देखिए, जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं, तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर
1: जी, जी।
3: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है
1: जी।
3: तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हम हरी खाद दलहनी फसलें, जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है, मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें
1: जी,
3: तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड
1: जी।
3: सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रख के हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम न केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
1: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है। और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका, और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है, और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है, और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
4: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टैंट्या भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या ये उचित है, आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं। अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में
3: आप सुन रहे हैं। झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें, हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
2: जी।
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था, उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
2: जी।
4: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में, तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा, जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो कृषि के लिए मित्र हैं, उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
2: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू, जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है। और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
5: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं। और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं, इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके। तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
2: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको, कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
2: बिल्कुल,
1: डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
6: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके, और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने

0: सिर्फ देखे नहीं, ठोकरे खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कभी ना कभी कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढते हैं। मैं कौन हूं, मैं जो कर रहा हूं उसका सच्चा मकसद क्या है, और क्या सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने से मिलता है या उसकी खोज हमें अपने अंदर करनी होती है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी को इसी खोज और समझ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। सतीश मेनन जी एक वेदांता टीचर, स्पिरिचुअल एजुकेटर, वेदिक एस्ट्रोलॉजर, मेडिटेशन मेंटर और स्पीकर हैं, और सनातन धर्म की गहरी परंपराओं के जीवन भर के विद्यार्थी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और IIM कोरीकोड से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की शिक्षा के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्निकल और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के रूप में एक लंबा सफर तय किया। शायद इसी वजह से उनका एक खास अंदाज है, गहरे और जटिल विचारों को बहुत ही सरल और आज की जिंदगी से जोड़कर समझा देना। पिछले 2 दशकों से वो भगवद गीता, उपनिषद, अष्टवक्र गीता, योगा वशिष्ठ, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण कर रहे हैं। उनका मानना है कि आध्यात्म दुनिया से दूर जाने का नाम नहीं, बल्कि दुनिया को और खुद को गहराई से समझने का मार्ग है। सत्संग सर्कल विद सतीश के माध्यम से वो सीकर्स को वेदांता और शास्त्रों से जुड़ने, सवाल करने, मनन करने और उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वेदिक एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन के माध्यम से वो लोगों को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इनर बैलेंस और कॉन्शियस लिविंग की दिशा की तरफ गाइड करते हैं। तो आज की जिंदगी अनप्लग्ड में हम बात करेंगे ध्यान की, ज्ञान की, कर्म की, ज्योतिष की और सबसे बढ़कर खुद को जानने की। जी हाँ, तो सतीश मेनन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में ओनली ऑन SN रेडियो। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
1: एकदम बढ़िया
0: जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। मैं बहुत इंटरेस्ट से इसके जो इंटरव्यूज होते हैं वो लेती हूँ, मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद बहुत करती हूँ ये सब। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डाइव डीप इन टुडेज प्रोग्राम। सबसे पहला सवाल सर, शुरुआत से शुरू करेंगे। आपने बहुत प्रोफेशनली, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मैनेजमेंट की है, IT इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक का सफर तय किया है और सालों साल इस फील्ड में आपने दिए हैं। उसके बाद जो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, वेदांता, आध्यात्म की दुनिया, इतनी गहराई से इससे जुड़ जाना, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट था, व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये जो बाहरी इंजीनियरिंग है, जो आउटर इंजीनियरिंग है, इसको छोड़ के अब इनर इंजीनियरिंग की तरफ चलना चाहिए? वो क्या, वो किस तरह की जर्नी थी आपकी? हाउ डिड दिस हैपन?
1: मैं कहूंगा तनुषा कि ऐसा कोई एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट तो नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। इंजीनियरिंग से तो मुझे मशीन्स की नॉलेज मिली, मशीन्स की समझ आई, मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस को समझाया, IT तो सारे सिस्टम्स को समझने का नाम ही है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं दुनिया के हर सिस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस माइंड से हम और आप इस दुनिया को देख रहे हैं उस माइंड को हमने कभी समझा ही नहीं। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, उस उसमें एक लाइन आती है वो है कि आत्मा वारे द्रष्टव्यः, यानी सबसे पहले अपने आप को जानो। उस दिन मुझे समझ आया कि करियर इम्पोर्टेंट है, सक्सेस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपने खुद को ही नहीं समझा तो हर अचीवमेंट के बाद भी अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाएगा।
0: एब्सोल्युटली।
1: आइंस्टाइन ने भी इस बात को थोड़ा सा एलाबोरेट किया है। आइंस्टाइन भी कहते थे द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल।
0: वाओ।
1: सो वेदांत इसके भी आगे जाकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वेदांत तो पूछता है कि हु इज द वन टू हुम द यूनिवर्स अपीयर्स कॉम्प्रिहेंसिबल। बात यूनिवर्स रियलिटी है या नहीं है उसकी नहीं है, वो कौन है जो रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मेरे लिए वेदांत एक करियर शिफ्ट नहीं है, इट इज अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। जो बाहर की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग थी उससे मैं अपने आप की अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ गया।
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सफर। और जनरली यही होता है, यही हम देखते हैं कि जब आप इवेंचुअली बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में आउटर वर्ल्ड में, तो अल्टीमेटली फिर वो जर्नी इनवर्ड हो ही जाती है, स्पेशली बीइंग्स जो थोड़े स्पिरिचुअली अलाइंड हों या स्पिरिचुअली एलिवेटेड हों। एंड आई थिंक समवेयर गॉड चूजेस यू। क्या आप भी इससे मतलब डू यू एको दिस थॉट कि यू आर चोजन वन समवेयर?
1: सर्टेनली, शास्त्रों में इसका कई जगह उल्लेख है कि आप हर जगह एक निमित्त मात्र बनकर ही अपियर होते हो। कृष्ण भी बार बार भगवद गीता में इसको दोहराते हैं और एक लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है ही, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया, बट इन रियलिटी आपकी मेरी गुणों की सत्व रज तम जो गुण है हमारे अंदर उसका एक प्रोपोर्शन है, उसका एक बैलेंस है, जिसकी वजह से आप मैं सब लोग अपने आप को एक जगह पे पाते हैं और उनके थ्रू प्रकृति कोई ना कोई कार्य करवाती है। और मैं प्योर जो अवेयरनेस हूँ इस कार्य को करता हुआ सिर्फ देख सकता हूँ। तो अगर निमित्त ये चीज को आप मानते हो तो नेचुरली आप हर जगह प्रकृति आपका सही इस्तेमाल सही जगह कर ही लेगी। और ये विश्वास ही हमें प्रकृति के कामों के लिए और इनडायरेक्टली ईश्वर के कामों के लिए तैयार रखता है खुद को।
0: बट समवेयर ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा। खैर, ये डिस्कशन बहुत डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो। तो आगे चलते हैं सर। हम सब स्ट्रेस्ड हैं, ऑल ऑफ अस इन टुडेज वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अस, नॉट इफ नॉट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, बहुत टैक्सिंग है लाइफ, बहुत डिफिकल्ट हो गई है लाइफ। तो इस सब के चलते अगर सिंस आप इतने वेदांतिक प्रैक्टिसेस में हैं, तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अगर आप हमें बता सकें जो कल सुबह से ही अगर मेरे श्रोतागण करना शुरू कर दें तो शायद लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, तो वो क्या होगी, वो एक प्रैक्टिस जो सुबह उठते ही सबको करनी चाहिए आपके हिसाब से?
1: ओ एब्सोल्युटली, मैं तो मेडिटेशन से भी पहले प्योर ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस सजेस्ट करूंगा।
0: वाओ।
1: दिन में आप तीन बार, ज्यादा नहीं तो भी तीन बार, सिर्फ एक मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो भगवद गीता की जो पहली लाइन है, पहला वर्स जो है, वो राजा धृतराष्ट्र अपने चैरिटियर, अपने सारथी संजय से पूछते हैं और उनसे सवाल यही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजोत्सव मांडव मामक पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र यही पूछ रहे, जो सवाल मैं ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस से पूछना चाह रहा हूं कि मेरे अंदर के आज पांडव जीते कि कौरव जीते। ये जो चीज है, हमें अगर मैं एक मिनट दिन में तीन बार अपने आप को कहीं दे पाऊं तो मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे अंदर ऐसा क्या थॉट है जिसको मैंने सप्रेस किया, क्या थॉट है जो अपराइज हुआ, क्या थॉट है जो आज जीत गया, क्या थॉट है जो आज हार गया। हम पूरे दिन अगर दुनिया को ऑब्जर्व करते रहे तो हमको पता चल जाएगा कि थॉट्स भी जो है वो किस तरह से अपने आप निकल के आते हैं, जैसे मैं कह रहा था हमारे प्रकृति के मुताबिक कैसे निकल कर आते हैं। और कृष्ण भी इसी बात को भगवद गीता में भी, रमण महर्षि भी इस बात को ही, इस इंक्वायरी को बहुत प्राधान्य देते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मा नाम, कृष्ण तो कहते ही है खुद को खुद से ही ऊपर उठाना है। आज न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानती है कि हम लोग काफी ऑटोमेटिक मेंटल पैटर्न्स में जी रहे हैं। वेदांत ने तो ये ट्रुथ जो है वो थाउजेंड ऑफ इयर्स पहले ही एक अलग लैंग्वेज में बोल दी थी। अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस बहुत करते हैं लेकिन अवेयरनेस
0: जो रूट है
1: और वो जो रूट है वहीं पे स्वतंत्रता है, वहीं पे फ्रीडम है, वहीं पे मुक्ति है। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये बस इतना है कि दिन में आप कुछ पल थोड़े ऐसे तो हो जाओ जहां आप दुनिया को नहीं आप खुद को देख रहे हो।
0: ब्यूटिफुली पुट सर, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत आपकी फरमाइश पे, बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म गोलमाल से, आने वाला पल जाने वाला है।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग सर। आगे चलते हैं। आपने बताया कि वेदांता एक बहुत प्रैक्टिकल साइंस है, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत रूटेड है टुवर्ड्स द जर्नी इनवर्ड, जो अभी तक हमें समझ आया है। तो इसी वेदांता की प्रैक्टिस से जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, जिस तरह से हमने स्ट्रेस की बात की, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एग्जॉशन है, तो उसको अगर डील करना हो तो क्या आपके हिसाब से वेदांता हमें यही सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को खत्म आप नहीं कर सकते रूट से, बट उनके प्रति जो आपकी विजन है, जो दृष्टि है, जिस तरह से आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, उससे बदलना जरूरी है, उससे बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी?
1: बिल्कुल। देखिए, भगवद गीता का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही इसी बात पर बेस्ड है। कृष्ण अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वॉर वही रहता है, चैलेंजेस वही रहते हैं, जो बदलता है अंत में वो अर्जुन का दृष्टिकोण। इसीलिए कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, माइंड को स्टेबल बनाना भी है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको एक अलग भाषा में इसको एक टर्म देती है, दे कॉल इट एज कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। यानी आप मीनिंग चेंज कर सकते हो किसी भी इवेंट का। लेकिन वेदांत, जैसे मैंने कहा, वेदांत को इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है कि स्टोरी क्या है। वेदांत जानना चाहता है कि स्टोरी कह कौन रहा है, स्टोरी टेलर कौन है। मुझे लगता है कि लाइफ का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसे एलिमिनेट जो करना होता है, वो उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स, और जब तक आप जिएंगे, लाइफ के स्ट्रगल्स और लाइफ के चैलेंजेस तो अलग अलग तरीके से आते ही रहेंगे। तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो भगवद गीता फिर कुरुक्षेत्र में नहीं, कोई पीसफुल आश्रम में बोला जाता। वॉर भी हुई, सिचुएशन भी वही रहे जैसे, लेकिन मैंने कहा अर्जुन की दृष्टिकोण बदल गई, जिस तरीके से फिर वो युद्ध में एंटर करते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ उतरते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़े कि मेरे दृष्टिकोण कैसे बदले।
0: वेरी वेरी
1: कैटेगरी, हाँ, वो वेरी फ्यू जो है ना, वो अवेकन हो जाते हैं, वो एनलाइटन हो जाते हैं।
0: ट्रू ट्रू ट्रू। और इसी से अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरह से हमारा स्ट्रेस का जो रीजन है, कहीं ना कहीं वो इतना ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया है, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स है, वैलिडेशन की नीड है, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की नीड है कि मेरी लाइफ यहां पहुंची, उसकी लाइफ देखो कहां पहुंच गई, तो ये सब बहुत नॉर्मल है आजकल, दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ। तो इसको वेदांता किस तरह से डील करता है, अगर वेदांता के नजरिए से हम बात करें और असली पहचान की बात करें कि मैं कौन हूं, क्या मैं वो सोशल मीडिया की पर्सनालिटी हूं या मैं कोई और हूं, उसको कैसे पहचाना जाए और उससे इनर पीस तक कैसे जाया जाए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम है ही नहीं। कंपैरिजन की टेंडेंसी पहले भी थी, सोशल मीडिया ने तो बस उसे एम्पलीफाई कर दिया है। वेदांत का सबसे मूल बेसिक क्वेश्चन जो है वो वही है और वही रहेगा कि मैं कौन हूँ। रमन महर्षि तो एक पूरा किताब लिखते हैं इस पे, हु एम आई, या उसको तमिल में कहते हैं नान यार। अगर मैं, मेरा जवाब है कि मैं, मेरी सैलरी हूँ, मेरे फॉलोअर्स हूँ, मेरा डिजिग्नेशन हूँ या फिर मेरा इमेज हूँ, तो फिर कंपेरिजन कभी खत्म नहीं होगा। कठोपनिषद यही कहता है कि हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ

0: ज्ञान पे डिपेंडेंट है, द मोर इट इज यू नो रेस्टिंग ऑन सेल्फ नॉलेज, द मोर अनशेकेबल इट बिकम्स। और वैसे भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, अपनी स्ट्रगल्स नहीं,
1: नाम ही हाइलाइट्स है,
0: नाम ही हाइलाइट्स है ना। तो अगर आप किसी और की एडिटेड लाइफ को आप अपनी अनएडिटेड लाइफ से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन कभी फेयर नहीं हो सकता है।
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अनफेयर वर्ल्ड का अनफेयर कंपैरिजन। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स, तो बिल्कुल अनइक्वल्स के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे चल रही हैं, आप बहुत वेल रेड हैं, बहुत मजा आ रहा है सर आपसे बात करने में। देयर सो मेनी थिंग्स जो आप हमें कोट कर रहे हैं, आई एम श्योर हमारे श्रोतागण आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ लेके उठेंगे और कुछ लोगों का जीवन कल से जरूर चेंज होगा। इसी उम्मीद के साथ एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे, आप ही की फरमाइश पे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों।

बिल्कुल एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है इन सभी गानों में. बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन सर. थैंक यू सो मच फॉर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. आगे चलते हैं. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से बहुत लड़ाई करती हूँ. मैं जब भी कहीं बात पे किसी भी बात पे जाती हूँ, किसी टॉक पे जाती हूँ, किसी डिस्कशन पे जाती हूँ जहाँ एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन है, या मैं पामिस्ट्री, देयर वाज अ टाइम जब मैं पामिस्ट्री टीच करती थी तो मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछती थी और मैं आपसे भी आज तक

0: मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप जिस तरह से अप्रोच करते हैं वो अगेन बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्लोज अप्रोच दैट यू हैव टेकन टुवर्ड्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल योर स्पिरिचुअलिटी कि एक मीडियम है सेल्फ को समझने का, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का और अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझने का जो अल्टीमेटली रूट है. एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पर्पस अगर देखा जाए तो यही है, एवरीथिंग एल्स इज यू नो सेकेंडरी. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ डेस्टिनी है, अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या फ्री विल है हमारे साथ, हमारे पास? क्या हम उस फ्री विल को यूज करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं? कुछ भी मीनिंग कुछ भी, या जो निमित है, जो होना है, जो लिखा हुआ है वही होगा? इसके बीच में जो डिबेट है वो किस तरह से आप अप्रोच करते हैं?
1: नहीं, ये बहुत गहरा सवाल है. मैं ज्योतिष को प्रेडिक्शन से ज्यादा हमेशा से सेल्फ अवेयरनेस का टूल मानते आया हूँ.
0: Yes.
1: मैं हमेशा सबको एक एग्जांपल देता हूँ, जब ज्योतिष सिखाता भी हूँ या कंसल्टिंग भी करता हूँ तब हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, और वो ये है कि हॉरोस्कोप जो है आपका वो कोई गूगल मैप की तरह है. वो रोड दिखा सकता है, ट्रैफिक दिखा सकता है, ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस भी दिखा सकता है, लेकिन गाड़ी कैसे चलाना है वो आपके ही हाथ में है. भगवद गीता के एंड में आप देखो तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यत इच्छसी तथा कुरु, अब जो तुझे उचित लगे वो कर. उन्होंने भक्ति योग सिखाया, सांख्य योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, ध्यान योग सिखाया. सारे योग सिखाने के बाद कृष्ण कहते हैं अब जो उचित लगे वो करो. अगर फ्री विल होती ही नहीं तो फिर कृष्ण ये कभी कहते नहीं. मॉडर्न साइंस भी आज एक कंप्लीटली जो डिटर्मिनिस्टिक पिक्चर थी उनकी रियलिटी की उसको लेकर काफी हट रही है. क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो साइंस ये सारे अभी मानने लग गए हैं कि यूनिवर्स इज फार मोर डायनामिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक. ओके, बहुत डायनामिक है. और साइंस फ्री विल को प्रूव नहीं कर रही, लेकिन वो हमें याद तो दिला ही रही है कि रियलिटी जो है वो बहुत सटल है. सिंपल कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से नहीं वर्क करती रियलिटी. वेदांत तो सदियों से इसी बात को मानता है कि प्रारब्ध जो है आपका आपको सरकमस्टेंसेस देता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके आपकी जो पुरुषार्थ है वो आपकी क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है. एंड कुछ फिलोसोफर जैसे विक्टर फ्रैंकल हुए, उन्होंने भी कहा ही है कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज अवर फ्रीडम. तो ठीक है, आपके सरकमस्टेंसेस आपने डिटरमाइन नहीं किए. वो चेस बोर्ड में अगर मैं आपको एक गेम के लिए इन्वाइट करूं और ऑलरेडी गेम आधा खेला गया होगा तो हम जहां से शुरू करेंगे आपके लिए तो सारे मोहरे वहीं पे स्टार्टिंग में मिलेंगे, वो आपका प्रारब्ध है. लेकिन वहां से आप गेम को किस तरीके से बढ़ाते हो आगे ये तो अभी भी आपके हाथ में है. वो जो रेस्पॉन्स है वो आपकी स्वतंत्रता है, आपका फ्री विल है, और आप जैसा उसको मूव करना चाहो कर सकते हैं. आज कोई व्यक्ति मुझे रास्ते से चलते हुए एक गाली दे दे तो गाली मेरे कानों तक आना ये बात तो तय है. चलो, लेकिन उस गाली के शब्द को मैं अपने मन में बसा लूं, उसको अपने मेमोरी में सेट कर लूं और उसके हिसाब से मैं इमोशनल होकर उसको याद रखूं, जिंदगी तमाम जिंदगी तक याद रखूं, ये जो चॉइस है ये तो मेरा ही है ना. उस व्यक्ति ने तो मुझे कभी ये कहा नहीं था कि जिंदगी भर इसे याद रखना, लेकिन हम याद रखते हैं. ओके, और फिर हम सफर करते हैं, हम उसी से परेशान होते हैं. पॉइंट यही है कि यहाँ रेस्पॉन्स हमारे हाथ में है. मैं एक बात हमेशा शास्त्रों से मुझे ये बात समझ में आई है कि आपको खुश होने से, आपको सुखी होने से कोई दूसरा मनुष्य या इवेंट रोक नहीं सकता. इवेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, शायद पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसको जो भी लेबल देना दो, लेकिन एक बार वो आप उस इवेंट को प्रोसेस करते हो तो शांत होना है अशांत होना है ये आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। तो इसीलिए कृष्ण बड़े क्लियरली कह रहे हैं अब तुझे जो उचित लगे अर्जुन वो तो कर, क्योंकि ये कृष्ण गीता में कहते हैं इस बात को। तो अगर जैसे मैंने कहा अगर फ्री विल होती ही नहीं तो कृष्ण ये कभी कहते नहीं।
0: ट्रू, बट इसी से मेरा एक और इसका सब क्वेश्चन है कि चलिए ये तो हो गई इमोशनल पैरामीटर्स की बात कि ठीक है मेरे रिस्पॉन्सेज मैं गवर्न कर सकती हूँ, हैप्पीनेस मैं गवर्न कर सकती हूँ, बट जो मटेरियलिस्टिक प्रोमिसेज हैं, फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में इतना ही प्रोमिस है तो क्या मैं उसको भी चेंज कर सकती हूँ? कैन आई डू एनीथिंग टू चेंज दैट?
1: मटेरियलिस्टिक प्रोमिस को हम कंपेरिजन के नजर से जब तक देखेंगे तनुषा तब तक तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जैसे गांधी जी कहते थे कि इन दिस वर्ल्ड देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये बात भी वैसे ही है कि मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में मुझे जो मिलता है मेरा प्रारब्ध या मेरा पुरुषार्थ से जो मुझे मिलता है मैं अल्टीमेटली उसके साथ सुखी रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता। जो मिल गया है मैंने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया और उसके बाद जो मुझे आउटकम मिला है मैं उसमें सुखी रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं ये तो अल्टीमेटली मेरा ही चॉइस है। पुरुषार्थ में भी याद रखिए चार चीजें हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं, एक तो धर्म फिर अर्थ फिर काम और मोक्ष। आपको जब मैं पूछता हूं कि अर्थ क्या है तो अर्थ लोग जनरली ऐसा बताते हैं धन की ही बात करते हैं, अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र, ऐसा नहीं है। अर्थ मतलब आपके जीवन को क्या चीज है जो अर्थ देता है, वो धन हो सकता है धन नहीं भी हो सकता है ना। अगर सेवा अर्थ दे रही है तो सेवा हो गया आपके लिए अर्थ ना? अगर नाम कमाना या फिर यू नो दुनिया देखना आपको अर्थ देता है तो फिर वो आपका अर्थ हो गया। एनीवे अर्थ, लेकिन अगर चलिए मैं पैसे के हिसाब से भी देखता हूँ क्योंकि पैसों से मैं अपने सारे डिजायर्स पूरे कर सकता हूँ, तो अब सवाल ये आ जाता है कि मैं पैसे धर्म के हिसाब से कमा रहा हूँ कि अधर्म के हिसाब से कमा रहा हूँ। तो ये पुरुषार्थ आपस में लिंक्ड है। मेरी कामनाएं कई सारी हो सकती है, मेरे डिजायर्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अर्थ कमाना है वो मैं धर्म के हिसाब से कमाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं धर्म अधर्म के हिसाब से कमा कर भी अपनी कामनाएं पूरी करूंगा तो फिर मुझे मुक्ति या मोक्ष मिलेगा नहीं। और मुक्ति किसी से नहीं चाहिए, मुझे अपने आप से ही चाहिए क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या की है। मैं चोरी चकारी करके अगर अर्थ कमा कर अपनी कामनाएं पूरी करता हूं तो मुझे रात को जो नींद नहीं आती वो ही मेरी नॉन मुक्ति या फिर मेरा बंधन बन जाता है। तो पुरुषार्थ, जब आप पुरुषार्थ वर्ड को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन पुरुषार्थ एक सर्कल है जो कह रहा है कि कामनाएं ऐसी रखो जितना तुम अर्थ कमा सकते हो, क्या पालन करके, धर्म की पालन को करके। अगर अधर्म के रास्ते जाना पड़ जाए तो फिर एक बार चेक कर लेना कि ऐसी कामनाएं ऐसा अर्थ कमाना आपको मुक्ति से दूर तो नहीं लेके जा रहा। तो ये आपके मटेरियलिस्टिक पोजेशंस और परस्यूट्स के पीछे का आंसर।
0: ब्यूटिफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। मुझे काफी कुछ क्लैरिटी आई और काफी कुछ एक आई थिंक जो एक पाथ है मिलना कि विच पाथ टू चूज एंड विच पाथ टू लीव और किन अटैचमेंट्स को छोड़ना होता है लाइफ में, उसके बारे में शायद थोड़ा सा मैंने सीखा और इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज रियली डीप, बट आई ट्राई टू पॉन्डर मोर ऑन इट एंड प्रोसेस इट मोर बेस्ड ऑन माई केपेबिलिटीज। ऑफकोर्स इतनी स्पिरिचुअल मैं अभी नहीं हुई हूं, बट आई अटेम्प्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू बी ऑन दैट पाथ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग इट सो ब्यूटिफुली सो पेशेंटली। आगे चलते हैं, आपने भगवद गीता से लेकर उपनिषद्स, अष्टवक्र गीता और योग वशिष्ठ इन सब का बहुत गहरा अध्ययन किया है। अगर आज की यंग जनरेशन के लिए आपको इन सभी ग्रंथों में से सिर्फ एक ऐसा वैसे चुनना हो जिससे उनकी जिंदगी बदल तो नहीं सकती, आई एम श्योर देयर इज नो 360 डिग्री टर्न, बट बहुत कुछ चेंज हो सकती है फॉर द बेटर, तो वो क्या होगा सर?
1: मुझे हमेशा ना ये सारे स्क्रिप्चर्स में खास करके भगवद गीता में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि श्री कृष्ण कर्म से पहले धर्म को यानी कर्म से पहले स्वधर्म को मान्यता देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कह रहे हैं कि स्वधर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए आपका क्या है, स्वाध्याय होना चाहिए, यू शुड नो योर सेल्फ। तो मैं भी अगर कुछ कहूं तो उसी रेंज पे कहूंगा कि आप कुछ भी बनाने से पहले आप अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ बिफोर यू ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ। आज हम करियर बिल्ड करने में लगे हैं, प्रोफाइल बिल्ड करने में लगे हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में लगे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बिल्ड कर रहे हो आपको उसी का कुछ पता नहीं। अष्टावक्र गीता भी एक लाइन कहती है, वो कहती है मुक्त अभिमानो मुक्तो ही। जैसा आप अपने बारे में मानते हैं ना वैसा ही आप जीना शुरू कर देते हैं। हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन तो हर महीने डबल हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझदारी डबल नहीं हो रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो हमें कई सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन
0: वो हमारी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल करती जा रही है।
1: एग्जैक्टली तो वो, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको दे नहीं सकती कि आप वो कौन, हु एम आई। तो वेदांत तो इसी से शुरू होता है, इसी से खत्म होता है ना। तो शायद इसीलिए आज भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, इतना ऑटोमेशन होने के बावजूद लोगों में एंग्जाइटी भी बढ़ रही है। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं, यही उसका कोर रीजन है।
0: बिल्कुल, और समय खोता जा रहा है, खुद के बारे में जानने का समय खत्म होता जा रहा है।
1: सही बात है।
0: आप खुद के साथ दो मिनट बैठना चाहें तो वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो दो मिनट में आप चार मिनट तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ या यहाँ ये करना है। तो इतना क्योस है, इतना क्योस है कि इट इज, और आई थिंक इट्स बिकमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट विद इन, जिसकी हम आज सारी चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सर, बट फिर भी अगर आप
1: लोकल, आज आप एक लोकल ट्रेन में या एक बस में या फिर एक पार्क में किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप देख ले जो अपने आप से सिर्फ बैठा हो, वो स्क्रोलिंग नहीं करता हो, किसी से कॉल पे बात नहीं करता हो, ओके, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे तो आज के जमाने में तो वो वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड है।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए सर, बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। इसी एहसास के साथ, इसी जज्बात के साथ हम सुनेंगे हमारा एक और खूबसूरत गीत फिल्म मसान से, मन कस्तूरी।

0: सर आपके सत्संग सर्कल में आप लोगों को सिर्फ सुनते हैं और उनके सवाल जवाब का उत्तर देते हैं, एक डायलॉग होता है उसमें, इस तरह की प्रैक्टिस है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके सत्संग सर्कल के बारे में थोड़ा सा, अगर आप बता सकें, और ये बता सकें कि क्या ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जवाब शायद आपको मिले नहीं मिले, वो एक एक, एक अंधा कुआं है, बहुत डीप है, बहुत जीवन लग जाता है सवाल जवाब पाने में, बट क्या सही सवाल पूछना जरूरी है? और आज तक इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद क्या आप कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा गहरा स्पिरिचुअल सवाल मिला जो लाइफ चेंजिंग था, जो आपके लिए सबसे एक रूट क्वेश्चन था जिस पे काम करना आपने शुरू किया और जिससे आपने बहुत कुछ पाया?
1: पहली बात तो तनुषा, सत्संग सर्कल जो हमारा एक प्रोग्राम है जो मैं कंडक्ट करता हूँ, वो संडे यानी हर रविवार सवेरे 8 से लेकर 10 इस टाइम पे हम लोग इसको ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, और उसके सारे सेशंस में बहुत ओपन एंडेड डिस्कशंस होती है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। वो एक ऐसा परिवार है जहां हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में कैसे उतारे इस पे चर्चा करते हैं। हमारे सेशंस में भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, सारे उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से हम समझते हैं, और हर व्यक्ति उससे क्या सीख लेता है उससे क्वेश्चंस करता है और उसे अपने जीवन में उतारने की फिर कोशिश है। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, एक सत्संग है जहां लोग प्रश्न भी पूछते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और साथ मिलकर हम लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य उसमें सिर्फ ज्ञान देना नहीं है बल्कि जीवन में स्पष्टता, शांति और सही दिशा लाना है। अगर सवालों की बात करूं तो देखिए, वेदांत की जो पूरी ट्रेडिशन है वो पहले से ही क्वेश्चंस की ही ट्रेडिशन है। नचिकेत थे जो कठोपनिषद में यमराज महाराज से सवाल करते थे, अर्जुन ने भगवद गीता में श्री कृष्ण से सवाल पूछा, राजा जनक ने अष्टावक्र गीता में अपने गुरु ऋषि अष्टावक्र से सवाल पूछा, इसीलिए ही उन्हें ज्ञान मिला। मैं सत्संग में भी लोगों को रेडीमेड आंसर देने की जगह उन्हें सोचने पे मजबूर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी होगी वो आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करेगा। मोस्ट पीपल जो सवाल करते हैं सारे लोग वो ये है कि हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल, लेकिन बहुत कम ये सवाल करते हैं कि मैं अपने लाइफ में ऐसा क्या पर्सपेक्टिव लेके आऊं जिससे मैं शांत हो जाऊं और मुझे सारे चीजों में सही दिशा मिले। किसी ने अगर ये सवाल कर लिया तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। सबसे गहरा सवाल इसलिए मुझे जो बार बार सुनने को मिलता है और मुझे भी अंदर तक हिला देता है, सोचने पे मजबूर करता है, और वो यही सवाल है जो वेदांत हमेशा से सिखाते, समझाते और हमें रिडायरेक्ट करते आया है कि मैं कौन हूं, और अगर मेरी सारी पहचान मुझसे छीन ली जाए तो फिर मैं कौन हूं, है ना? और सच को तो मुझे लगता है कि मैं भी अभी उसी सवाल के साथ जी रहा हूं। हो सकता है उसका पूरा जवाब किसी शब्द में कभी नहीं आए, लेकिन इस ये एक मंथन है और ये मंथन एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, और धीरे धीरे आप उस मंथन के सेंटर तक पहुंचते हैं
0: और विश और अमृत को शायद अलग कर पाए जीवन में।
1: एग्जैक्टली,
0: ब्यूटिफुल सर, बहुत ही गहराई से आपने इसका जवाब दिया, और इसी से मेरा अगला सवाल भी था, मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि अगर आप अपने सभी रोल्स, अपनी आध्यात्मिक पहचान, आपकी प्रोफेशनल पहचान, सभी उपलब्धियां, इन सभी को एक तरफ रख के सिर्फ एक इंसान की तरह सेंटर होके बैठें और खुद के साथ बैठें, तो आप सबसे पहला सवाल खुद से क्या पूछेंगे?
1: शायद मैं खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछूं, जो कुछ मैं अपने बारे में मानता हूं मैं हूं उसमें से कितना सच है, और कितना सिर्फ एक कहानी। हम सब अपने स्टोरीज के साथ ही जीते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ,

0: वेदांत इन सबको चैलेंज करता है। आप अगर आंख बंद कर सारे श्रोताओं के लिए भी बोल रहा हूं, अगर आप आंख बंद कर जरा इमेजिन कीजिए कि दिन हुई एक तरफ आपके, और आप आंख बंद कर विजुलाइज कीजिए कि दिन हुई और अब दिन धीरे धीरे धीरे धीरे रात में बदल रही है। तो एक तरफ दिन हुई थी और कुछ देर बाद आपके इमेजिनेशन में रात हो गई ना। अब वापस से एक इमेजिन कीजिए, ऐसा एक वक्त याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे, और धीरे धीरे इमेजिनेशन में एक ऐसा वक्त भी लाइए जहां आपका शायद अपमान हुआ था या आप बहुत दुखी थे या आपके साथ बड़ा ही कुछ कष्टदायक हो गया था। अब ये दोनों इमेजिनेशन आपने की, एक दिन और रात के बीच में और एक सुख और दुख के एक संदर्भ के बीच में। मेरा सवाल ये है कि जब दिन और रात को हम इमेजिन कर रहे थे तो क्या मैं दिन बन गया या मैंने दिन और रात को देखा? क्या मैं दिन बन गया, क्या मैं रात बन गया? नहीं, राइट। मैंने तो सिर्फ दिन और रात को देखा। ठीक वैसे ही जब दूसरा संदर्भ मैंने आपको पूछा, आप एक सुख और एक दुख का इंसिडेंट याद कीजिए, जब दूसरा संदर्भ मैंने आपको पूछा आप एक सुख और एक दुख का इंसिडेंट याद कीजिए, तो अब सवाल यह है कि क्या आप उस टाइम को सिर्फ याद कर रहे थे या आप सुखी हो गए या फिर थोड़ी देर के लिए आप दुखी हो गए? ये जो बात है ये इम्पोर्टेंट है कि हर मनुष्य जो एक कहानी में जीता है, कभी कभी अनकॉन्शियसली वो कहानी वो खुद के बारे में लिख देता है। वेदांत ये नहीं कहता, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि आपको आपकी स्टोरी लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम वो स्टोरी नहीं हो, तुम वो ऑथर हो और तुम अपने इस कैरेक्टर में बंद मत जाना। इसीलिए ही ये जो सवाल है जो हमने पूछा कि मैं कितना सच हूं और मेरी सिर्फ कितनी कहानी है, ये जानने के लिए नेति नेति ये दो जो शब्द है जो हमारे शास्त्र हमको देते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। नेति नेति मतलब नॉट दिस नॉट दिस, ये भी नहीं ये भी नहीं, लेयर बाय लेयर हम अपने आइडेंटिटी को अगर देखते जाए, धीरे धीरे ये भी नहीं ये भी नहीं, लेयर बाय लेयर उसे निकालते जाए, तो जो बच जाएगा अंत में शायद वही असली आप है।
1: वाओ।
0: और ऑनेस्टली अगर मुझे उस दिन इसका आंसर मिल भी जाए तो शायद अगले दिन मैं फिर से अपने आप से सवाल पूछूंगा, क्योंकि वेदांत हमेशा से जैसे मैंने कहा इंक्वायरी पे जोर देता है, डेस्टिनेशन पे नहीं।
1: वाओ, ब्यूटीफुल सर, कितना लेट आंसर था। और जब आपने कहा कि आंखें बंद करके इमेजिन करो, तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप सुख सोचते हैं तो सुख में तो आप डिजायर मोड में चले जाते हैं, हाय मैं कितनी खुश थी, काश वो वापस आ जाए, और दुख में आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आपके आंसू छलक जाते हैं। ऐसा कैसे होता है मेरे को समझ नहीं आता, बट बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। और इट्स एक्चुअली ट्रू, मतलब कि कुछ भी आप जब तक इन लेयर्स को नहीं खोलते जाओगे, इन परतों को नहीं खोलते जाओगे, आप खुद तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप जो हो वो बहुत बहुत बहुत नीचे कहीं है दबा हुआ, जिसको आपने बहुत सारी वर्ल्डली डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस रोल्स इन सब के बीच में ढाक दिया है। और आई थिंक आपकी गलती भी नहीं है, दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज वॉट लाइफ इज, बट द पर्पज इज टू कम बैक ऑन ट्रैक एंड लिव दिस लाइफ लीडिंग टूवर्ड्स that again, that core again. So it was a beautiful experience, sir. मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना है कि अगर कोई आपका सत्संग सर्कल ज्वाइन करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप बता सके।
0: कोई भी सत्संग सर्कल ज्वाइन करना चाहे तो मेरे वेबसाइट asksatishliveguide.com पे जाए और वहाँ पे सत्संग सर्कल के लिंक पे क्लिक करे
1: जी,
0: उन्हें उस पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ पे सत्संग सर्कल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सत्संग सर्कल हर संडे सवेरे 8 से 10 होता है और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उस कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे जहां आपके और हमारे जैसे कई लर्नर्स बहुत जो इच्छुक है जो

0: सीखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो ज्वाइन होते हैं और इस जर्नी को बढ़ाते हैं।
1: अमेजिंग,
0: आप सबका स्वागत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, व्हेन आई हैव दिस एयरिंग, जब हमारे इस शो की एयरिंग होगी तब भी मैं ये लिंक शेयर करूंगी हमारे ग्रुप के साथ, सो दैट जितने SN रेडियो फैमिली के मेंबर्स हैं एटलीस्ट वो लोग उसको वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर पाएं और जान पाएं सत्संग सर्कल के बारे में। थैंक यू सो मच सतीश सर, इट वॉज ट्रूली इनलाइटनिंग एंड elevating this whole experience of interviewing you. ऐसा था जैसे कोई नदी बहरी है thoughts की, emotions की, experiences की, spirituality की, और मैं बस उसमें purify होती जा रही हूँ. So it was beautiful, beautiful talking to you. Thank you so much. I cannot thank you enough.
0: Thank you Tanusha. मैं भी दिल से आपके और आपके पूरे टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने श्रोताओं से जुड़ने का ये अवसर दिया। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और ईश्वर करे हम सब इसी तरह ज्ञान, प्रेम और पॉजिटिविटी को बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू।
2: सतीश जी से आज की बातचीत ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाई है। स्पिरिचुअलिटी जिंदगी से भागने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझने का नाम है। सतीश जी, आपने हमें वेदांता, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और सेल्फ इंक्वायरी के जरिए खुद के अंदर झांकने के लिए एक नई नजर दी है, एक नया नजरिया दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी SN रेडियो फैमिली की तरफ से कि आपने अपना ज्ञान, अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। दोस्तों, मैं हूं RJ तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। याद रखिए, शायद जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब दुनिया में है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छुपे होते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक और नई जिंदगी के साथ। तब तक खुद को समझते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी को पूरी जागरूकता के साथ जीते रहिए। नमस्कार।

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

बोली सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हम झोली सबसे

तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

0: हफ्ते की। इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी

0: बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
1: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है।

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बलों के साथ महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष मध्य पूर्व में बिताए थे।

1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान झेलम जिले में लौट आया। उन्हें एक दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया जबकि उनके पिता व्यवसाय के अवसरों की तलाश में बॉम्बे आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की।

लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए एक करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

सन 1943 में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सर्विस की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौटे। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। वहां वो उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत बनाते थे। चलिए दोस्तों, सुने उनका ये गीत।

संगीतकार मदन मोहन के मामले में संगीतकार खय्याम साहब का कहना है कि वो संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन्हें उनका गहरा ज्ञान था। हालांकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए ही काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। बस फिर क्या था, मदन मोहन जी की किस्मत बदल गई। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार एस डी बर्मन को दो भाई के लिए और श्याम सुंदर को एक्ट्रेस के लिए संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई। चलिए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

अली जामले बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी।

आज कर

बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सब ने ठुकराया, कोई तो पास बिठा।

कौन ये जाने कब मिल जाए, रास्ते में हम रात कोई, मेरे दिल का दर्द समझ कर

जो मिल गया है तेरा सहारा एक नई

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

noche.

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे, लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवी कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएन सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा, संगीत बनाने के अलावा, रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे

विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे न याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: बेनियाज़े मैं पैमाने वफा हो जाना, बेनियाज़े मैं पैमाने वफा हो जाना, तुम भी औरों की तरह मुझसे जुदा हो जाना। हर एक से कौन मोहब्बत निभा सकता है, हर एक से कौन मोहब्बत निभा सकता है, सो उसने दोस्ती यारी तो की, वफा नहीं की। मैं क्या बताऊं कि क्यों उसने बेवफाई की, मैं क्या बताऊं कि क्यों उसने बेवफाई की, मगर यही कि कुछ ऐसा मिजाज था उसका। नमस्कार आदाब और बहुत बहुत खुश आमदीद 90.8 FM की लहरों पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, संगीत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये दूरियों को मिटाकर दो दिलों को एक ही धड़कन में पिरो देता है। आज अगस्त की इस सुहानी शाम को हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं फोन की घंटियों के जरिए एहसासों के उस सफर पर, जहां देश के अलग अलग कोनों से हमारे अजीज दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं। हर कॉल के साथ जिंदगी का एक नया तजुर्बा, कोई भूली बिसरी याद और दिल के बहुत करीब छुपी एक सुरीली फरमाइश खुलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इंतजार किस बात का, मिलाते हैं आज के सफर की पहली कॉल और देखते हैं कि सुरों का कारवां आज किस शहर से शुरू होता है। टन टन। हेलो नितिन।
2: यस आरती जी, कैसी हैं आप?
1: आप कैसे हो नितिन?
2: बस मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। बोलिए बोलिए।
1: नितिन, तो अपने प्रोग्राम अल्फाज से सास तक से मैं बात कर रही हूँ और अभी हमारा ये फरमाइशी प्रोग्राम आने वाला है जिसमें मैं अपने दोस्तों की पसंद की गजलें उन्हीं की जुबानी पूछ के और फिर हम अपने प्रोग्राम में उसको एयर करेंगे। तो मुझे आप ये बताइए नितिन कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: आपको पता तो है, हरिहर है।
1: Oh yes, I forgot. I'm sorry. हरिहरन। हाँ दोस्तों, नितिन का तो फेवरेट जो है वो हरिहरन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो नितिन ये बताइए कि हरिहरन की आपको कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है?
2: सबसे ज्यादा तो ऐसा कह नहीं सकता, मुश्किल है। मैं एक गजल जो मुझे अभी मेरे एकदम जहन में आ रही है जो मुझे बहुत पसंद है। हर गजल का एक मूड होता है, तो अब एकदम से मैं सोचा हरिहरन का जैसे ही नाम लिया तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि क्यों ना आप ऐसा वो ये वाला गजल प्ले करें। साखिया जाए कहां, हम तेरे में खाने शहर के शहर नजर आते हैं, ऐसे साखिया जाए कहां। ये लगाइए।
1: अरे वाह, आपकी तरह आपकी चॉइस भी बहुत उम्दा है।
3: तो अब नितिन एक और बात बताइए कि आप हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये गजल आपको इतनी
2: आपकी आवाज कट रही है।
3: हाँ, आप ये बताइए हमें कि आपको ये गजल इतनी क्यों पसंद है।
2: गजल्स क्यों पसंद है? गजल्स में बहुत गहराई है, उसमें मतलब गानों में काफी लिरिक्स उसका बहुत तगड़ा होता है और गजल से बहुत सुकून मिलता है।
3: ये तो जनरल आपने गजल्स के बारे में बोला, आपने जो अपनी पसंद की अभी गजल बताई है, मैं ये जानना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर गजल में ऐसा क्या है जो आपको इतनी पसंद है?
2: द वैरायटी, द वेरिएशंस ऑफ हरिहरन।
3: ओ, आवाज के उतार चढ़ाव।
2: एब्सोल्युटली।
3: ओके, लिरिक्स भी तो उसमें मैटर करते हैं ना?
2: बढ़िया गजल है,
3: बजाइए, मजा आएगा सब कुछ। ओके नितिन, तो दोस्तों सुना आपने हमारे नितिन जी की कितनी जबरदस्त पसंद है, और ठीक है मैं आपकी ये गजल एयर करूंगी, और थैंक यू सो मच नितिन प्रोग्राम में आने के लिए। ओके,
2: वेलकम वेलकम,
3: बाय
2: बाय बाय।

0: वाह क्या बात है। अभी आपने सुना कोची से हमारे रेडियो SN के अजीम डायरेक्टर और मेरे बेहद अजीज दोस्त नितिन राज जी को। हकीम नासिर साहब का लिखा ये शाहकार कलाम, साकिया जाएं कहां हम तेरे मैखाने से, शहर के शहर नजर आते हैं वीराने से। और उस पर हरिहरन साहब की वो मखमली रूहानी आवाज इस गजल ने महफिल में एक गहराई और ठहराव सा भर दिया है। नितिन की ये पसंद आज के पूरे प्रोग्राम की शान बन गई है दोस्तों। शुक्रिया नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी नफीस गजल सुनवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलाते हैं आज की अपनी दूसरी कॉल। टन टन टन टन।
1: हेलो उषा।
2: हेलो,
1: हेलो, आई एम गुड। तो उषा कैसी हो?
2: अच्छी हूँ।
1: गजलों का प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तो वही वो सुनते हुए फिर सोना है, बस रोज वही हो रहा है।
1: लोरी लोरी के माफिक हो गई गजलें।
2: हाँ,
1: तो उषा फरमाइशी प्रोग्राम में आप बताओ कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: हाँ, गजल सिंगर तो बहुत हैं, बट मैंने अभी चुना है, मैं सुनना चाह रही हूँ आशा तय का गाया हुआ।
1: कौन सी फेवरेट
2: लिखा हुआ है?
1: अच्छा, मतलब आपकी फेवरेट गजल आशा ताई की कौन सी है?
2: हाँ, शाम से आँख में नमी सी है, ये वाला।
1: वाओ, ये ओरिजिनली तो जगजीत सिंह जी ने गाया है ना?
2: करेक्ट करेक्ट।
1: ओके ओके, ये इतना क्यों पसंद है आशा ताई का ये वाला वर्जन?
2: ये वाला वर्जन शायद मुझे, ऑफ कोर्स बोल तो अच्छे हैं, पंचमदा का कंपोजिशन शायद इसीलिए मुझे पसंद है।
1: योर फेवरेट इज पंचमदा, दैट्स व्हाई यू लाइक इट सो मच। ओके, यू आर वेरी लॉयल एज फार एज योर चॉइस इज कंसर्न्ड अबाउट पंचमदा। I know that you are die-hard fan of Panchamda. Right, right. तो ये वजह है। ओके ओके उषा डार्लिंग, तो हम सुनते हैं फिर सब दोस्तों के साथ आपकी यही पसंद आशा ताई की आवाज में, शाम से आंख में नमी सी है। ओके, तो आइए दोस्तों, चलो फिर सुनते हैं। थैंक यू, बाय
2: बाय।

0: क्या ही बात है दोस्तों, हैदराबाद से हमारी बहुत ही खास दोस्त उषा नागराजन जी की ये पसंद सीधे दिल को भिगो जाती है। उषा जी खुद एक बहुत बेहतरीन गायिका हैं दोस्तों, आप जानते ही हैं, और ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाती हैं ये खातून। लेकिन संगीत को लेकर उनका नफीस जो अंदाज है, जो मिजाज है, वो कमाल का है। आशा ही उनकी पसंदीदा सिंगर्स में गुलकारों में से हैं। और गुलजार साहब की लिखी ये गजल शाम से आंख में नमी सी है, हमने इसको जगजीत सिंह की आवाज में बहुत बार सुना, लेकिन उषा जी की आवाज में बात सुनने के बाद जब ये बजती है तो इसका असर दुगना हो जाता है। आशा ताई ने इसे कितनी खूबसूरती से गाया है दोस्तों। उषा, आपकी इस खूबसूरत फरमाइश का दिल से शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर और मिलाते हैं हमारी तीसरी कॉलर। ट्रम ट्रम ट्रम ट्रम।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्कार आरती जी।
0: हेलो अपर्णा, कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरती जी, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपर्णा,
1: बताइए।
0: हमारे गजलों के प्रोग्राम में हम अपने अजीज दोस्तों को फोन कर रहे हैं उनकी पसंद जानने के लिए कि उनको कौन सी गजल और कौन सा गजल सिंगर और वो गजल उनको क्यों पसंद है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपर्णा से पूछूं कि उसकी पसंद की गजल कौन है। तो अपर्णा, आप हमें बताइए आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है और कौन सी गजल पसंद है आपको?
1: सो स्वीट ऑफ यू आरती जी, सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मुझे शामिल किया आपके गजल के प्रोग्राम में।
0: यू आर मोस्ट वेलकम।
1: पता नहीं कि आपने सही इंसान को चुने हो या नहीं, क्योंकि मैं गाने तो बहुत सुनती हूँ मगर गजलों की उतनी शौकीन नहीं हूँ।
0: okay.
1: या तो हाँ, नहीं यू कह सकते हो कि मैं गजलों के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, साउथ इंडियन होने के नाते शायद मैं वो शब्दों की गहराई शायद महसूस नहीं कर पाती हूँ ना, तो ये हो सकता है।
0: या आई कैन अंडरस्टैंड।
1: फिर भी हाँ, नहीं फिर भी जब मैं वो बॉलीवुड गानों में गाने जब सुनती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और बाद में पता चला कि उनमें कुछ गजलें भी थे।
0: वेरी नाइस। तो आपने मैं से बता दीजिए।
1: बहुत ही सॉरी, मैं आपने पूछा और मैं घूम फिर के बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब दूंगी। वैसे तो मैं मोहम्मद रफी साहब की बहुत बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ आरती जी।
0: ओके।
1: ये गाना मैंने शायद पहली बार सुना था जब मैं वो स्टैंडर्ड 12 पास करके वो इंजीनियरिंग स्टार्ट होने से पहले वो छुट्टियां होती है ना,
0: हाँ जी,
1: उस टाइम की बात है। तो पहली बार मैंने वो गाना रेडियो पे सुना था। गाना है तो बोल ऐसे जाती है कि कहीं एक मासूम नाजुक सी बहुत खूबसूरत मगर सावली सी, सॉरी ऐसी आवाज में गा रही हूँ,
0: बहुत सुंदर गा रही है। मुझे दिए गाना बहुत पसंद है।
1: हाँ बहुत सुंदर है। आई थिंक वो लिरिक्स कमाल अमरोही जी के हैं, म्यूजिक खयाम जी के हैं।
0: ओके।
1: का नाम मुझे याद नहीं है आरती जी।
0: ओके, कोई बात नहीं।
1: हाँ एक्चुअली मैंने कहा ना आपको उस वक्त की बात है, तो इसलिए मासूम मैं कितना थी जानती नहीं हूँ मगर शामिल हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि रवि साहब मेरे लिए गा रहे थे।
0: so
1: आरती जी, तो आप ये गाना मेरे लिए प्ले कर सकते हो आरती जी?
0: एनी टाइम स्वीट हार्ट, एनी टाइम। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू अपर्णा, व्हाई नॉट। आपने सब चीजें बता दी, आपका फेवरेट गजल सिंगर, आपको गजल क्यों पसंद है, गजल के बोल बता दिए, एवरीथिंग यू हैव कवर्ड स्वीट हार्ट। तो हम फिर सुनते हैं अपने दोस्तों के साथ अपर्णा की पसंद एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली थी।
1: सांवली थी।
0: ओके, थैंक यू सो मच।

दोस्तों, बेंगलुरु से हमारी बहुत ही प्यारी और सुरीली कॉलर अपर्णा, जिसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी सादगी और सुकुचाते हुए मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, आरती की ये गाना मुझे इसलिए बेहद पसंद है क्योंकि मैं भी सांवली हूँ और जब ये गाना बजता है तो मैं खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। अपर्णा की ये मासूम और सच्ची बात वाकई मेरे दिल को छू गई। अपर्णा डियर, खूबसूरती तो दिल और सादगी में होती है। आपकी इस बेहद भावुक और प्यारी फरमाइश ने आज के शो को एक अनमोल एहसास दे दिया है। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत सांवली सी बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, वाकई बहुत बहुत

0: फोन करने का सोचा कि जाना जाए कि उनकी पसंद की गजल सिंगर कौन है और उनकी गजलें कौन सी पसंद हैं और क्यों पसंद हैं। तो यही तीनों सवाल मैं शैलेंद्र आपसे भी करती हूँ। तो आप सुनते हैं ना मेरा प्रोग्राम?
1: जी जी, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है और आपके इस प्रोग्राम से गजलें सुनने का एक अच्छा मौका मिल गया है हम सबको।
0: दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ओके, तो बताइए फिर आपकी कौन सी फेवरेट आपका गजल सिंगर है?
1: जी, मेरे फेवरेट गजल सिंगर है हरिहरन जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, हरिहरन जी, वेरी नाइस। और हरिहरन जी फेवरेट आपके गजल सिंगर हैं और इनकी फेवरेट गजल भी होगी कोई?
1: जी जी बिल्कुल है, उनकी तो बहुत गजलें हैं।
0: जैसे कोई एक नाम बताएंगे?
1: पसंद है।
0: हाँ जी,
1: हाँ। अगर मैं जी जी जी ये उनकी गजल है गुलफाम, उनका एक एल्बम था गजल का, तो उसमें से वो है मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जैसे कि मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने नहीं जमाने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और इतनी ज्यादा ये गजल आपको क्यों पसंद है, कोई खास वजह है इसकी?
1: हाँ, इसकी खास वजह यह है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारा एक ग्रुप था सिंगिंग ग्रुप।
0: ओके।
1: तो उस वक्त तो ये बात है 1995-96 की।
0: ओके।
1: तो उस वक्त तो कैसेट चलती थी।
0: अच्छा।
1: तो मेरे एक दोस्त जो दीपक थे उन्होंने वो कैसेट लेके आए थे और वो कैसेट गुलफाम का कैसेट था और उसमें मैं ये गजल सुना, ये गजल पहली बार मैंने सुना तो एंड मैं उसका दीवाना हो गया।
0: वाह, आपकी याद कितनी मुश्किल है लेकिन आपकी बहुत शिद्दत से आपने इस चीज को याद रखा, वेरी नाइस और बहुत सुंदर। मुझे आपका ये आपकी याद एक्चुअली बहुत पसंद आई कि आपका रीजन क्या है, आपको एक एक तारीख वर याद है सारी बातें, वेरी नाइस। तो सुनाते हैं फिर आपको मुझे फिर वही याद आने लगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं
1: शैलेंद्र,
0: हाँ शैलेंद्र की पसंद पर हरिहरन साहब की ये बहुत खूबसूरत सी गजल, और आप भी सुनिए। थैंक यू शैलेंद्र।

0: वाह, कोल्हापुर से हमारे बेहद अजीज दोस्त जी की पसंद का तो कोई जवाब ही नहीं। कुमार बाराबंकी साहब के लिखे इस लाजवाब शेर और मिसरों को मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। जब मशहूर एल्बम गुलफाम में हरिहरन साहब की आवाज मिली तो ये गजल और भी बहुत खूबसूरत हो गई। शैलेंद्र जी, आपकी इस पसंद ने महफिल में पुरानी यादों की एक बहुत ही मीठी सी धुन फैला दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अब दोस्तों वक्त आ गया है अपने इस टेलीफोनिक सफर की आखिरी कॉल मिलाने का, तो आइए देखते हैं कि कौन है हमारे आखिरी कॉलर। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो राजी,
1: नमस्कार जी,
2: कैसे हो आप?
1: जी आई एम फाइन।
2: तो क्या गजल की प्रैक्टिस कर रहे थे कोई?
1: नहीं, आज सुबह तो एक दिन में एक गजल रिकॉर्ड की थी मैंने।
2: अरे वाह,
1: रोज तो एक दो गजल तो करता हूँ।
2: अच्छा, वेरी नाइस, बहुत पैशनेट सिंगर हैं आप गजलों को लेकर।
1: हाँ, मेरे को तो I'm singing all the singers, but Ghazal is very close to me, na.
2: Okay, I know that.
1: Filmi gaane sab gaata hoon, but Ghazal is very close.

0: ये भी आप जानते हैं,
1: जी
0: तो हम
1: जी
0: बताइए हमारे दोस्तों को।
1: यस मैडम, जैसे कि आपने मुझे पूछा, मैं हार्डकोर फैन हूँ गजल्स का, सभी सिंगर्स की गजल गाता हूँ, बट डेफिनेटली मैंने जो गजल को जाना वो जगजीत सिंह जी के थ्रू जाना। जी,
0: बिल्कुल।
1: तो मैं तो जगजीत सिंह जी को सबसे ज्यादा गाता हूँ, सबसे ज्यादा मैंने बहुत यंग एज से उनको सुना और उनको गाता भी हूँ। नंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, सभी को गाता हूँ,
0: सभी को
1: बट
0: गाते
1: जगजीत सिंह जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं गजल्स में।
0: बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि जगजीत सिंह साहब की, मैं जानती हूँ आपको बहुत सारी गजलें पसंद होंगी, लेकिन फिर भी एक होती है जो दिल के बहुत करीब होती है, वो बताइए।
1: जी मैडम, रिसेंटली जैसे देर आर सो मेनी गजल्स वेरी क्लोज टू मी, बट रिसेंटली मैं जो एक गजल दो तीन बार रिकॉर्ड किया हूँ और सुन भी रहा हूँ, बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे, मिलते
0: अरे वाह,
1: रहे सभी से मगर अजनबी रहे। जी,
0: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और
1: ये
0: इन सब
1: इसमें
0: में
1: एक
0: आपको
1: लाइफ
0: जो
1: की
0: पसंद
1: फिलॉसफी है,
0: नेचुरली।
1: इसमें इसमें मैडम लाइफ की एक फिलॉसफी है। वैसे भी गजल्स जो है वो फिलोसॉफिकल ज्यादा है, दर्द बहुत है गजलों में, तो ये गजल बहुत प्यारी मुझे लगती है। अभी मैं कल ही इसको रिकॉर्ड किया था। जी
0: अच्छा, आपने रिकॉर्ड भी किया, तो फटाफट एक लाइन सुनाइए इसकी।
1: बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे,
0: वेरी नाइस।
1: बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी
0: वाह वाह,
1: रहे। दिस इज अ ब्यूटीफुल गजल यार।
0: यस ऑफ कोर्स। तो आपने बताया ही कि आपको इसकी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको शायद ये गजल बहुत पसंद है। तो
1: जी
0: चलिए फिर सुनते हैं आपके साथ, हमारे दोस्तों के साथ मिलके, आपकी पसंद की ये गजल। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच
1: थैंक यू
0: हमसे
1: वेरी
0: जुड़ने
1: मच
0: के लिए।
1: मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू।
0: थैंक यू।

क्या बात है, हमारे आज के आखिरी कॉलर राजीव पांडे जी की पसंद ने तो आज की शाम को पूरी तरह मुकम्मल कर दिया। राजीव जी का गजलों से इतना गहरा लगाव है कि वो रोज 3-4 गजलें खुद रिकॉर्ड करते हैं और जगजीत सिंह साहब के तो बहुत बड़े फैन हैं। निदा फाजली साहब का लिखा ये लाजवाब कलाम और 1993 की टिप्स एल्बम से जगजीत जी की आवाज में निकली ये गजल, बदलाना अपने आप को, जो थे वही रहे, सीधे रूह तक पहुंचती है। राजीव जी, आपकी इस खूबसूरत पसंद ने आज अल्फाज से एहसास तक के इस पूरे टेलीफोनिक सफर को एक बेहद यादगार ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी। अभी जो हमारे तीन ये कॉलर्स थे, अपर्णा, शैलेंद्र और राजीव, बात करते करते मुझे ये पता चला कि ये तीनों स्टार मेकर के एक ग्रुप में ग्रुप कैप्टन मतलब दोस्त हैं, स्टार मेकर के ग्रुप के ही मेंबर भी हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि मैंने तो ऐसे ही मतलब इनका नाम इस ऑर्डर पे चुना था, लेकिन शैलेंद्र से बात करने के बाद पता चला कि ऐसा भी माजरा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अपर्णा, शैलेंद्र और राजीव, आप अपने स्टार मेकर के ग्रुप में इसी तरह गाते रहें और नई ऊंचाइयों को छूते रहें। तो दोस्तों, अगस्त की सुहानी शाम को फोन की घंटियों के साथ पिरोई हुई एहसासों की ये माला आज यहीं पर मुकम्मल होती है। कोची से नितिन राज जी, हैदराबाद से उषा नागराजन, बेंगलुरु से हमारी प्यारी अपर्णा, कोल्हापुर से शैलेंद्र कुमार जी और जबलपुर से राजीव पांडे जी, आप सभी के प्यार और पसंद ने आज की शाम को बेहद खास बना दिया। चलते चलते आज की इस रूहानी शाम के नाम दो सत्र याद आ रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाए। फासले जिस्मों के हों तो कोई बात नहीं, फासले जिस्मों के हों तो कोई बात नहीं, दिल से दिल का ये ताल्लुक कभी कम ना हो। इसी सुरीले एहसास, मीठी यादों और अपनायत के साथ अब आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत। अगले कल फिर इसी वक्त कुछ नई फोन कॉल्स और कुछ नए दिलकश एहसासों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, अपनों के साथ रहिए। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है। यानी कि यही जो नाइट्रोजन है, जो दोस्त है, वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
3: नमस्कार,
2: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
4: नमस्कार,
2: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
5: नमस्कार।
2: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
0: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
3: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है, ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
2: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
4: जी जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
2: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है या इस स्तर?
5: आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
2: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
3: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है
2: जी,
3: और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उसको प्रभावित करता
2: है। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है।
4: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है
2: जी।
4: तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात यह कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसे जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सब का हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की

0: विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
1: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है, तो उससे हमारे में कैंसर और गॉइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करें, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
2: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया, हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
1: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है, तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे, जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में, ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
3: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है, और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है, इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि 4-2-1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास धारी जो उर्वरक है, इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में ये अनुपात जो जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है। फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बढ़वार हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़कनाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है, इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं खर्च, उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4:2:1 मोटे तौर पर, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
3: डॉक्टर शर्मा, क्या अभी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
0: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4:2:1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कम्पोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें, तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है पीलेपन में आ रहा है उसका हरा रंग कम आ रहा है तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे, अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना यह भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है और किसानों
2: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में है नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की और जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
2: बिल्कुल,
1: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। तो नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये कदम उठाया गया है।
2: किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
3: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरह

0: तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं, जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है। और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए। लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की। इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है, वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
0: जी, बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
1: जी।
0: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जल में विलेय फर्टिलाइजर है, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
1: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताएं।
2: जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
3: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20

0: कीटाणु है, ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे, जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
2: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपके अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारी मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं?
3: देखिए, जैसा बताया कि अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं, तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रख के हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम ना केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम संलेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता

0: किए बिना।
1: बिल्कुल,
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
1: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है। और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका, और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है, और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया है नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे। तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है, और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं। लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में, जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
1: जी।
3: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटा व्हील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है, आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं, जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं, जिसको कि आपने पराली कहा, तो मेरे किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं। अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है, लेकिन डॉक्टर शर्मा इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
1: जी,
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है। जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
1: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसपे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
5: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, इस दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें जरूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइमटेबल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपनी परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM छावा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हमारा आप तक खेती बाड़ी के माध्यम से भिन्न भिन्न खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुंचाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप जो हमारा किसान है वह अपनी आय में वृद्धि करे, साथ ही अपनी आजीविका को सशक्त बनाए और हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलावों को समझे और पर्यावरण के अनुरूप खेती करे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। और इसके लिए हमें बहुत ही आवश्यकता है कि हमें भिन्न भिन्न कृषि के बारे में ज्ञान हो, साथ ही अच्छी पैदावार वाली फसलों के बारे में पता हो, उपकरणों के बारे में पता हो, साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल है जिसकी डिमांड जो है वो बाजार में ज़्यादा है और अलग अलग देशों में प्रदेशों में, साथ ही जो मंडी के भाव है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फसल है हमारे पास

0: जो भंडारण रखे हैं हमने, उसे हमें कहाँ पर देना है, कहाँ पर बेचना है, वो क्या है, जिसके अनुसार हम हमारा जो किसान है वो यह पता कर पाए कि उसे आने वाली समय में कैसी कृषि करनी चाहिए। साथ ही हमारी मृदा परीक्षण है, मृदा हमारे पानी की जो जांच है, जो हमारी फसलों पर और हमारी फसलों पर और पशुओं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, जो पानी का पीएच है, हमारी मिट्टी की में जो गुण है वो कौन कौन से गुण है और गुण के हिसाब से हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें खेती बाड़ी कार्यक्रम जो हमें कृषि के माध्यम से मिलती है, केवीके के माध्यम से मिलती है, तो वही सारी जानकारियों को हम चाहते हैं कि रेडियो टांटिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप जानें और आवश्यकता अनुसार अपनी खेती में आप सुधार करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे बायोगैस और बांस की खेती के से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, आप और हम जानते हैं कि हमारे घर में पशु है जिससे हम बायोगैस बना सकते हैं, साथ ही हमारे हमारी जो पेड़ है, हमारी जो खेतों की मेड़े हैं उस पर हम आसानी से कोई ना कोई पेड़ लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम बांस की खेती करें। वहाँ पर बांस का जो पौधा है उसको अगर हम हमारे खेतों की मेड़ों पे अगर हम लगा दें तो ना केवल हमारी जो बाउंड्री है वो सशक्त बनेगी, बांस का जो पौधा है वो टमाटर की खेती के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर की जो लताएं हैं उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हम कहीं ना कहीं बांस के लठों का सहारा लेते हैं। तो किसान साथियों, हम देखें तो इसका कहां कहां उपयोग किया जाता है वो भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: ये बातचीत के यहाँ पर शुरुआत करते हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दवाज, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए, क्या महत्व है इसका?
3: मोनालिसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है, साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो। इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पर अच्छी तरह से बातचीत कर सकें।
2: जी जरूर, तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10-20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
2: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
5: जी हाँ, बांस के नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, कि एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है एक साल में हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी जान करने वाला पौधा नहीं है। जी। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की में तुलना करें, तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है। और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हमको अभाव व्यापारी। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
2: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है। और साथ ही किसानों के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं, और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
4: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
2: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते। और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई, उनके पास पशु हैं
2: जी,
3: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
2: जी,
3: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
2: जी
3: पानी के साथ दिया जा सकता है। इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
2: जी।
3: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब

0: मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीनबंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीनबंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीनबंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए। क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बायोगैस प्लांट है, ये MNRE मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
2: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास, आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीन बंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
1: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
2: जी जी।
1: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है, तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं उसका लाभ उठाएं।
2: बिल्कुल। जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
1: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
2: जी,
1: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है, जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि अच्छा। एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
2: अच्छा।
1: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात आती है, जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
2: जी।
1: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
2: अच्छा।
1: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम का शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है
2: जी।
1: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
2: अच्छा।
1: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है, और जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है, और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी, तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को, वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
2: अच्छा।
1: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है, तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
2: अच्छा।
1: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
2: अच्छा।
1: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की, उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी होगा निकल जाएगा, तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी।
2: जी बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
1: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं।
2: जी जी।
1: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
2: अच्छा।
1: या हम कहीं से वो जाते डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है। अगर हमारे पास हमने ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उससे वो गैस भी रिमूव, जो खराब गैस वो रिमूव हो सकती है। अदरवाइज इस गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती और ना ही खाद में बदबू होती है। और गैस पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे जैसा बनता है। गांव में एक भावना आती है कि जो ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है।
2: जी।
1: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो LPG के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
2: अच्छा।
1: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आपको शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है।
2: जी बिल्कुल।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं, और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है।
2: जी जी।
1: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना।
3: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहाँ आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहाँ पर अगर आप वहाँ का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है, तो उसमें अपने आप वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं, और जो उसका अवशेष बच रहा है जो ठंडी हुई घास उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं, और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, DAP, यूरिया और कुछ लोग पोटास, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों काफी कमी हो गई है, और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है
1: जी, जी।
2: उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
1: ठीक है,
2: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो HTB के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं। उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी, और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
1: जी, जी।
2: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे, और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आज आप HDP का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे, वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
1: जी।
3: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलेमस सोमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंड्रोकलेमस सिकिमियंसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां 2-3 मोटे बांस की और एक बैम्बूसा न्यूटल्स, 3 जातियों की खेती हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
3: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों को चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक ही धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है, या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके कि आप बांस का पौधा खरीदें या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में।
3: जी हाँ, पोषक तत्व का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं, दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं, और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें, और 100 ग्राम खली डालें, और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें, और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
1: जी।
3: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें, फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती है थोड़ी सी फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं, और 100 ग्राम के आसपास खली, और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है, यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद, हम नाइट्रोजन कम डालते हैं, और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है, और 100 ग्राम खली, और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP, और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैरायटी आपको हमने देखा है 6-7 वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखोआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
1: जी।
3: तो आप तीन वैरायटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस आपको पानी बहुत चाहिए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
1: जी,
3: वो लगाएं, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
1: तो
3: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है, तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी है।
1: जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए।
3: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खुरदरा होता है। बांस सिलिका से भरा होता है, और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम, जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं
1: जी।
3: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दें। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उतना ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
1: जी।
3: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
1: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: खाते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर दबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
2: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान भाइयों, आप लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं और आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना है। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा मुख्य विषय था वो बायोगैस और बांस की खेती के ऊपर, कार्यक्रम के माध्यम से आपने बायोगैस से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही बहुत सारे किसान भाइयों का जो सवाल थे कि बायोगैस से जो बदबू आती है खाना बनाते समय, इन आदि सवालों का भी जवाब आपको मिल गया होगा। और साथ ही बांस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, बांस को कहाँ लगाना चाहिए, कौन सी उचित भूमि होती है और बांस को हमें किन किन कीटों से बचा के रखना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना। किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी को यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही हम आशा करते हैं कि जो भी आज के इस कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी मिली है ऐसे आप अपने खेतों में जरूर इसका प्रयोग करेंगे और अपनी फसल को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। हम जो बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर बायोगैस जो प्रसिद्ध है वो गैस के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी गैस का प्रयोग करके हम अपने घरों में किचन में अपना खाना बना पकाते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये जाना कि जो केचवे बनाने की खाद है वो भी वहीं से हमें मिल सकती है, जहां पर ओवरफ्लो होने के बाद जो अवशेष जो निकलता है उससे केचवे उसको बहुत ही अच्छे से खाते हैं, क्योंकि जो अपना गोबर है उसके अंदर काफ़ी हीट होती है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से केचुआ एकदम से उसे खा नहीं सकता। तो जब तक उसकी हीट निकल जाने के बाद केचुआ बहुत ही अच्छे से और थोड़ी गति से उसको खाता है। तो किसान साथियों, ये एक अच्छा गैस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हम केचुआ खाद बना के जो जैविक खाद है वो भी हम अच्छे से बना सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है, और आज जो हमारे प्रोग्राम में कलाकारा हैं उनका नाम है आरती जी। बाकी की बातचीत हम उन्हीं से करेंगे। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत ही प्यारा गीत। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मेरे प्यारे सभी सुनने वालों को आरती रॉय का सादर प्रणाम, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने पूछा मेरा जन्म स्थान, तो मेरा जन्म स्थान हरियाणा का एक शहर करनाल है। शायद आपने से उन बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगी कि कल्पना चावला का भी जन्म स्थान करनाल ही है और रिश्ते में वो मेरी नीज होती हैं, मेरी भतीजी होती हैं, तो उम्मीद है अब आपको सब याद आ गया होगा और करनाल के बारे में भी। That is the most interesting thing about my town.
0: Fantastic, fantastic.
1: So that's it.
0: बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आरती जी का ही गाया हुआ एक और गीत।

0: आरती जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब भी आप कहाँ रहती हैं और उस जगह के बारे में कुछ बताइए।
1: Yes, of course. समीर जी, मैं करंटली मैं लुधियाना में रह रही हूँ, पंजाब में है लुधियाना। लोगों को मालूम ही होगा कि लुधियाना एक इंडस्ट्रियल सिटी है, हौजरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मैं पिछले 3.5 साल से यहाँ पर हूँ। 3.5 साल पहले हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, यहाँ आए थे। तो अनफॉर्चुनेटली माई हस्बैंड पास्ड अवे लास्ट ईयर ड्यू टू लिवर सिरोसिस डिजीज। तो उसके बाद अभी तक फिलहाल मैं यहीं पे हूँ करना।

0: बहुत ही प्यारा गीत। आरती जी, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि गाना गाने का शौक आपको कब से हुआ, कब से लगा आपको कि मुझे गाना गाना चाहिए?
1: मुझे याद नहीं समीर जी मैं कब से गाना गाती हूँ। मुझे लगता है मैं बचपन से ही गाना गा रही हूँ। अब बचपन में ही मैंने जब गाने सुना करती थी तो गाने लिख लिया करती थी अपने हाथों से। मैंने एक पूरी नोटबुक पूरी उसमें आशा जी के, लता जी के, मोहम्मद रफी साहब के सबके गाने मैं जो सुनती थी, मुझे पसंद थे, मैं लिख लेती थी और वही मुझे अभी तक भी याद है। मेरी गानों को लेकर मेमोरी थोड़ी एलिफेंट मेमोरी रही है और मुझे बचपन से ही गाने का शौक है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों एक गीत भी सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ।

0: आरती जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको संगीत में क्या पसंद है? किस तरह के गीत पसंद हैं? फिल्मी, नॉन फिल्मी, गजल्स, क्या?
1: संगीत में मुझे सभी तरह का मेलोडी पसंद है। मुझे फिल्मी गाने, लता जी के, आशा जी के, सुमन कल्याणपुर, मुबारक बेगम, जसकीर कौर, मोहम्मद रफी साहब, सब ये सब बहुत पसंद है। बचपन से ही गजलें भी बहुत पसंद है। बचपन से मैं मेहदी हसन साहब की गजलें सुना करती थी, जगजीत सिंह जी बाद में आए लेट 70s में, तो सारी दुनिया अब उनकी मुरीद हो गई थी। तो बहरहाल मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी, पंकज उधास और गुलाम अली मेरे फेवरेट गजल गायकों में से हैं। इसके अलावा तलत अजीज भी मुझे बहुत पसंद है, भजन सुनना भी पसंद है, और मैं थोड़े फिल्मी भजन गा भी लेती हूँ, और सेमी क्लासिकल और क्लासिकल म्यूजिक भी मैं कई बार सुनती हूँ, पर ज्यादा मुझे ओल्ड मेलोडीज ही पसंद है।
0: बहुत बढ़िया। दीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ।

0: बहुत प्यारा गीत। आरती जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गाने वालों में से मोहम्मद रफी आवाज उनके गले से निकलकर सुनने वालों की रूह की गहराई में उतर जाती। मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही हो जाती है उनकी आवाज सुन के। और इसके अलावा हेमंत कुमार, सभी पसंद है और बहुत पसंद है। मोहम्मद रफी साहब का दिन ढल जाए हाय रात न जाए गाना मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। तो ये सब लोग मुझे बहुत पसंद हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, सुनते हैं आरती जी का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया आरती जी। और अब वाला सवाल मेरा पिछले सवाल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही है, आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है?
1: जी हाँ, अभी मैंने जैसे बताया व्हाट इज कोइंसिडेंस, आप वही बात पूछ रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब के बहुत अच्छे गाने हैं, और जैसे मैंने बोला गाइड फिल्म का ये गाना दिल दहल जाए मुझे बहुत पसंद है। इस गाने से एक्चुअली मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, तो इसलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है। वैसे तो मोहम्मद रफी साहब के बहुत सुंदर गाने हैं, यू नेम एनी थिंग, और आप कह ही नहीं सकते कि आपको ये पसंद नहीं है, पर ये गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों सुनते हैं आरती जी का गाया हुआ एक और गीत।

0: आरती जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब कभी भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं आप उसमें?
1: मेरी हॉबीज पहले रीडिंग हुआ करती थी, बहुत पढ़ा करती थी। आई यूज टू बी एन एविड रीडर। आजकल बहुत कम हो गई है एक्चुअली, कंसंट्रेट नहीं कर पाती रीडिंग में। आजकल पोइट्री राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई यूज टू राइट, आई यूज टू पेन डाउन पोइट्री, और कई बार सोते सोते 4 बजे उठ जाती हूँ और कई ख्याल मन में घुमड़ रहे होते हैं तो फटाफट उनको मैं लिख लेती हूँ। और सिंगिंग मेरी इस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव हॉबी है, और इसके अलावा ओल्ड मेलोडी सुनना और टीवी पे उर्दू ड्रामा देखना मुझे बहुत पसंद।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना आरती जी की हॉबीज क्या हैं, आरती जी अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करती हैं। तो आइए एक गीत भी सुनते हैं आरती जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बड़ा ही सुंदर गीत। आरती जी आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जैसे ही सिंगर्स के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: मैं समझती हूँ हम जैसे तमाम सिंगर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी आवाज सिर्फ आपकी है, किसी और की तरह नहीं है। आपकी आवाज अपने आप में यूनिक है, बस उसी को निखारिए और अपने नेचुरल अंदाज में गाइए। कॉपी करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हर आवाज इंडिविजुअल आवाज होती है और यूनिक है। अपने अंदाज में गाइए, दिल से गाइए, सुर में गाइए और बस फिर गाते जाइए।
0: बहुत बढ़िया, प्यारा सा संदेश, प्यारा सा मैसेज। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत आरती जी की आवाज में।

0: और आरती जी, अब हम हमारे प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए भी आप एक संदेश दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कोशिश हमेशा करते रहिए कि कोई गलत फैसला ना ले लें, और भले ही कोई भी काम हो वो देर से हो, लेकिन सोच समझ कर जिंदगी के फैसले करें। कभी कभी आपका एक गलत फैसला आपकी सारी तस्वीर और तकदीर बदल देता है आपकी जिंदगी की। तो वक्त के साथ बहते रहें, फ्लो में रहें, वक्त के सामने अड़ के खड़े मत हो जाएं, बस इस वक्त के साथ बह जाएं, उसके ऑपोजिट नहीं जाएं। अच्छे दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्ती निभाएं भी, खुश रहें। खुशियां जब पास होती हैं तो हमें ज्यादातर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो होती तो हैं, उनकी कदर कीजिए, हर पल को जिए। क्योंकि जब खुशियां हाथ से फिसल जाती हैं तो वक्त काटे नहीं सकता, इसलिए अपनी खुशियों को पकड़ के रखें। अपने माँ बाप से प्यार करें, बहन भाइयों से प्यार करें, सब रिश्तों की कदर करें, उन्हें निभाएं, खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। एक अच्छी मुस्कान से बढ़कर कोई नयामत नहीं है, जो होठों से हो लेकिन आंखों में भी नजर आए। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़े ही प्यारा मैसेज। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और गीत आरती जी का गाया हुआ।

0: बहुत बहुत आभार आरती जी जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीत सुनकर, आपकी बातें सुनकर श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।
1: मुझे भी बहुत मजा आया। ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, पर मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आई एम ट्रूली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
2: तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। और आज जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर हमारे साथ हैं वो हैं राघवेंद्र देशमुख साहब। बाकी हम राघवेंद्र साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें बताएं ना, कहाँ हैं वो, क्या करते हैं वो, कौन है वो। तो राघवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लीजिए बात कीजिए आपके फैन से।
1: नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राघवेंद्र देशमुख है। समीर भाई और रेडियो SN, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर। मैं बेंगलोर का निवासी हूँ। लगभग 28 साल मैंने टेक इंडस्ट्री यानी IT इंडस्ट्री में काम किया था। 2 साल पहले मैंने उससे संन्यास ले लिया है, या सेमी संन्यास या सेमी रिटायरमेंट कह सकते हैं, वो ले लिया है। फिलहाल मैं एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और आज का जो हॉट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वो पढ़ाता हूँ। साथ में सिंगिंग इज अ बिग हॉबी ऑफ माइन। गाने गाता भी हूँ, गाने सुनता भी हूँ, क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, और आजकल फुटबॉल का भी फीवर चढ़ा हुआ है तो मैं फुटबॉल भी फीफा वर्ल्ड कप के जरिए देख रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर समीर भाई, एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर अगेन।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राघवेंद्र भाई। तो दोस्तों, ये हैं राघवेंद्र जी। तो क्या करते हैं, कौन हैं, कहाँ हैं, वो उन्होंने बताया। और इनके म्यूजिक का भी आनंद उठाने के लिए लीजिए, पेश करता हूँ ये गीत। इनको सुनिए और तय कीजिए कि और क्या जानना चाहेंगे हम राघवेंद्र जी के बारे में।

0: बहुत खूब राघवेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत के बारे में ही बताइए, आपने कहा कि आपको संगीत का शौक है, यू आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग। सो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछना चाहेगा कि किस तरीके का संगीत आप पसंद करते हैं, गाने में, दूसरा सुनने में, मतलब कहने का मतलब है आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और किस तरीके के गीत आप गाना पसंद करते हैं।
1: बहुत अच्छा। तो गीत जो मैं सुनना पसंद करता हूं वो उसमें कोई सीमा नहीं है। मैं तमाम हिंदी के गाने सुनता हूं, कन्नड़ा के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। पहले पहले मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था सिंगर बेस्ड, मतलब किशोर दा गा रहे हैं, रफ़ी साहब गा रहे हैं, बाला सुब्रमण्यम साहब गा रहे हैं, आशा ताई गा रही है। लेकिन बाद में जो 80 और 90 के दशक के कई सारे जो सिंगर्स आए तो उन्हें मैं सुनता गया और अलग सा एक संगीत का मज़ा आ रहा था उस समय। जो मैं गाना पसंद करता हूँ वो है गुरुदेव किशोर दा। मतलब उनके गानों के बिना जिंदगी अधूरा लगता है मुझे। तो रोज तो मैं किशोरदा के एक दो गाने सुनता भी हूँ और गुनगुनाता भी हूँ। साथ में मैं एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का जो जो कन्नड़ा कन्नड़ा के गीत हैं या फिर हिंदी के उनके कई सारे हिट्स हैं वो मैं सुनता हूँ। तो मैं थोड़े पुराने पुराने कह सकते हैं क्योंकि 70-80 के दशक के गाने या फिर 90 के जो नदीम श्रवण जतिन ललित वाले स्टाइल के जो गाने हैं वो मैं सुनना पसंद करता हूँ। बाकी इंस्ट्रूमेंटल में थोड़ा अभिरुचि है क्योंकि उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो जो कंटिन्यूसली बजते हैं वो कानों में लगा करके यदि काम कर रहा हूँ या फिर नींद नहीं आ रही है तो वो अगर सुनता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे।
0: और किस तरह के गीत आप गाना पसंद करते हैं?
1: किस तरह के गीत? किशोरदा के बहुत सारे किशोरदा के ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आता है और मैं उन्हें गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। जब भी कोई मुझसे बोलता है कि यार थोड़ा गाना गा दे तो मैं मुसाफिर हूँ यारो पिक कर लेता हूँ, कुछ ऐसे ही किशोरदा के गाने मैं पिक करके मैं गाना शुरू कर देता हूँ। कन्नड़ा में यदि कोई बोलता है तो कुछ गा तो एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का मैं गाना गा देता हूँ। वो होता है कि वो जो टॉप ऑफ द माइंड गाने होते हैं ना वो ऐसे गाने मैं बहुत ही पसंद करता हूँ।
0: मतलब आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि आप सिर्फ किशोर कुमार जी के गाने गाते हैं। अगर इसको फर्दर कैटेगराइज करते हुए कहें कि आप रोमांटिक गाते हैं, सैड गाते हैं, अच्छे हंसने वाले गाते हैं, मोटिवेशनल गाते हैं, मेलोडी बेस्ड गाते हैं, म्यूजिक बेस्ड गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ किशोर
1: नहीं,
0: कुमार
1: ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि किशोरदा अलग अलग मूड के गाने मतलब इतने सरलता से गा चुके हैं तो हमें कैटेगराइज करने का कोई हक नहीं बनता एज अ सिंगर एज अ लिसनर, है ना। तो सैड मैड ग्लैड ऐसा एक थीम अगर हम रख दे तो किशोरदा के सारे गाने उसमें फिट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कोई सब कैटेगराइज नहीं करता, जो दिल को लगा मन को लगा कि आज वो गाना गाना है तो गा दिया आज।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी गायक को ऐसा ही होना चाहिए, जब जिस वक्त जो मूड हो उसको गाएं और अपने को आनंद लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इन गीतों का हम आनंद उठाएं जो राघवेंद्र जी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किए।

0: बहुत खूब राघवेंद्र भाई, बहुत खूब। चलिए, आपने जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो आपने कहा कि आजकल का जो दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आज मतलब आप जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं आप। तो मैं तो कोई मतलब IT इंडस्ट्री वो नहीं हूँ, टेक्नीशियन या IT ग्रेजुएट नहीं हूँ, मुझे IT के बारे में कुछ नहीं पता है। और बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको ज़रूर पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे सुनकर या मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रूटीन लेमैन के लिए, मैं एक लेमैन हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायने है ChatGPT पे या Gemini पे जाके पोस्टर बनाना। मैं ChatGPT पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन मोशन पूछना तो स्टुपिडिटी है। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया मेरे को इस तरीके का पोस्टर चाहिए, उसमें ये रंग डाल देना, उसमें ये इमोशंस डाल देना, ये लिख देना। दैट इज द बेस्ट यूसेज ऑफ AI फॉर मी। तो आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है देशमुख भाई, आगे के 10 सालों के बाद हमारे जैसे लेमैन खत्म हो जाएंगे और कुछ जो नई जनरेशन आएगी वो AI को कुछ और अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही होगी क्या? सो व्हाट इज द फ्यूचर यूसेज ऑफ AI, माय रियल क्वेश्चन इज।
1: जी, AI आमतौर पे कई सारे हम जैसे लोग भी हैं जो उसको यूज करते हैं या पढ़ाते हैं। हमने भी कई बार पोस्टर ही बनाया है ChatGPT, Gemini या बहुत सारे ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं। लेकिन आजकल जो चल रहा है, जो मेरा नजरिया है और जो 30 साल मैंने टेक इंडस्ट्री में गुजारा है, उसको देखते हुए मैं बता सकता हूं कि AI जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे फोन्स में भी AI जमा हुआ है, हमारा हम जो सेल्फी वगैरह लेते हैं उसको भी वो ठीक कर देता है, हमें तो हीरो जैसा दिखा भी देता है वो कभी कभी, है ना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो उसका इस्तेमाल होने लग गया है। हम आउटडेटेड नहीं होंगे बिकॉज ह्यूमन इंट्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गो हैंड इन हैंड। आज के तारीख में लोग, बड़े लोग कहते हैं टेक इंडस्ट्री के काम चला जाएगा आधे इत्यादि, कुछ नहीं होगा, पीपल विल पिवट। हम लोग कुछ अलग दिशा में कुछ और करने लगेंगे, लेकिन AI को हमारी बात सुननी होगी बिकॉज ह्यूमन इंट्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज गो टूगेदर। ये मेरा मानना है, दावा करता हूं मैं कि ह्यूमन इंट्यूशन विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन।
0: ऑल राइट, दो ऑफ कोर्स आई हैव अ क्वेश्चन हियर, लेकिन ये बातचीत लंबी हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज बढ़ती जा रही है और हमारा इंट्यूशन कम पर कम होते जा रहे हैं बिकॉज हम और ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं AI के ऊपर। तो हमने सोचना बंद कर दिया है, हम इंट्यूटिव हैं ही नहीं कि हम पोस्टर बनाएं तो खुद अपने हाथों से बनाना हमने बंद कर दिया है। ChatGPT को बोल देते हैं, वो बना देता है। सो वेयर इज द इंट्यूशन इज गोइंग। सो दो ऑफ कोर्स ये लंबा टॉपिक हो जाएगा बॉस, कि हमारी इंट्यूशन आप जैसे कह रहे हो तो वो साथ में साथ मेरे को तो नहीं लग रहा। एनीवेज, अभी हम लोग संगीत के इस प्रोग्राम में हैं, तो चलिए जब तक हमारा इंट्यूशन काम कर रहा है, जब तक हमारा टैलेंट हमारे साथ है, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राघवेंद्र देशमुख जी की आवाज में गाने ना लग जाए, तब तक राघवेंद्र जी की ओरिजिनल आवाज में ये प्यारे से गीत सुने, बाकी फ्यूचर में देखेंगे। दोस्तों आइए मजे लें इन गीतों का।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राघवेंद्र भाई, दूसरी बात आपने कही थी कि आपको फिल्मों का बहुत शौक है, एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट, क्योंकि फिल्मों का शौक मुझे भी बहुत ज्यादा है। वो बात थोड़ी सी अलग है कि मुझे आई मीन आई वुड लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर सेइंग दिस कि मुझे हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। बॉलीवुड मूवीज मुझे बहुत ज़्यादा जमती नहीं है, क्योंकि 90% मूवीज, जो मेरा मानना है, वो या तो स्टार सेंट्रिक होती हैं कि जी सलमान खान के ऊपर बन रही है मूवी, सो मूवी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट्स कॉन्टेंट, इट्स म्यूजिक, इट्स स्टोरी। म्यूजिक मूवी इज एंटायरली इज सपोज टू बी अबाउट सलमान खान, खत्म। तो स्टार सेंट्रिक होती हैं, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, मूवी क्या है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इस वजह से मैं तो खैर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल मूवीज देखने की कोशिश करता हूँ, बट बात आपके पसंद की हो रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज एक्चुअली डू यू लाइक, क्योंकि आपने कहा आप बहुत सारी मूवीज देखते हो, सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? रोमांटिक, एक्शन, सस्पेंस, सैड, मैड, ग्लैड, वो जो आपने बीच में कहा बड़ा अच्छा कहा था। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक?
1: तो मैं सैड तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि फिल्में एक जरिया है अपने आप को अनवाइंड करने का, ऐसा मेरा मानना है। तो सैड मूवीज क्यों देखना, दर्द तो ऑलरेडी है हमारे इर्द गिर्द, है ना। तो ग्लैड मूवीज हो, एक्शन मूवीज हो, जिसमें ज्यादा दिमाग को खर्च करने की जरूरत ना हो और जिसमें अच्छे गाने हो, तो वो ऐसे फिल्में मैं देखता हूँ। मैं शोले फिल्म का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मतलब अनगिनत बार शायद देख चुका हूँ शोले, क्योंकि वो फिल्म मुझे, हालांकि बच्चन साहब तब स्टार बने नहीं थे, लेकिन उस फिल्म में कई सारे ऐसे स्टार्स हैं, और जो बहुत बड़ा स्टार उस फिल्म का है वो है कहानी उस फिल्म की उस समय के लिए। तो वैसे फिल्म मैं पसंद करता हूँ जिसमें ज्यादा दिमाग को जोर ना देना पड़े, हंसे, देखे, निकल जाए, याद करे उन गानों को,
0: ऑलराइट,
1: उन फिल्मों को,
0: ऑलराइट। तो फिर भी अगर बिल्कुल ऑन द लाइटर साइड पार्ट ऑफ इट, अगर मैं यूं ही पूछने की कोशिश करूं आपसे कि अपनी तीन चार फेवरेट मूवीज के नाम बताइए, आपने एक तो बताई दिया शोले।
1: जी, तो शोले है, नमक हलाल है, तो वो दोनों तो ऑल टाइम फेवरेट्स रहेंगे मेरे लिए। और एक है दिल चाहता है, जो साल 2000 में बना था, मुझे अहेड ऑफ टाइम्स लगा, वो बिल्कुल ही परफेक्ट फिल्म लगा मुझे वो। और द गुड द बैड एंड द अगली, जो बहुत पुरानी काउबॉय फिल्म है हॉलीवुड की, तो मुझे ये तीन चार फिल्में जो हैं वो बहुत ही पसंद है। और इनमें से तीन हिंदी फिल्मों के नाम जो मैंने लिए, शायद उनके डायलॉग्स भी कभी कभी मैं ऐसे ही बोल देता हूँ।
0: जी जी जी जी, आई गेट इट। बिल्कुल अपने टाइम की जिनको कहना चाहिए स्तंभ, मतलब वो क्या टर्म मुझे यूज करना चाहिए, बिल्कुल पैरागॉन, एकदम ऐसी फिल्में जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं आया कभी तक। स्पेसिफिकली आपने मेरी ही पसंद की एक मूवी का नाम लिया, द गुड द बैड अगली, अमेजिंगली ब्यूटीफुल मूवी, 3 घंटे की वो मूवी, मैं आज भी कई बार देखने की कोशिश करता हूँ, बहुत खूब। तो दोस्तों आप विचार कीजिए कि कौन सी मूवीज आपको पसंद आती हैं, और हमें बताइए अगर पॉसिबल हो कि आपको कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं और क्यों। आइए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, राघवेंद्र जी की ही आवाज में जो उन्होंने गाए।

0: बहुत खूब राघवेंद्र भाई, अगर आप इजाजत दें और मुझे माफ करें, मैं एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बात करना चाह रहा हूं। मेरे दिमाग में कूद रहा है, मैं उसको चुप नहीं करा पा रहा हूं, तो पूछ लूं अगर आप कहें तो।
1: जी बिल्कुल सर।
0: आपने कहा कि आप वो स्पोर्ट देखना पसंद करते हैं जो इंडिया का पैशन है।
1: जी,
0: दैट इज क्रिकेट।
1: जी,
0: आपको नहीं लगता राघवेंद्र भाई कि हम लोगों को क्रिकेट को दरअसल अपना नेशनल स्पोर्ट्स घोषित कर देना चाहिए? हॉकी को खामा खा में रखा हुआ है देखने देखने के लिए, जब 99% दुनिया इंडिया और वही अंग्रेजों के दिए हुए खेल को ही देखना पसंद करती है, तो उसे हम नेशनल स्पोर्ट क्यों नहीं घोषित कर देते? और हॉकी में ऐसा क्या नहीं है जो इंटरेस्ट हमको क्रिकेट में आता है वो हॉकी में क्यों नहीं आता? तो

0: there are two questions I have asked.
1: जी तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है मेरे हिसाब से, जो स्पोर्ट्स के प्रेमी है. मैं हॉकी भी फॉलो कर रहा हूँ. हाल ही में इंडिया ने बड़े बड़े टीम्स को भी डिफीट किया है, हराया है हॉकी में. तो ऐसा है कि इंडिया अच्छा कर रहा है. अब क्रिकेट को ये बनाना चाहिए नेशनल स्पोर्ट या नहीं, ये तो मैं मानता नहीं हूं कि कोई नेशनल एक स्पोर्ट होना चाहिए. लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा कवरेज मिलता है, स्टार्स बन जाते हैं ओवरनाइट. वही हम हॉकी या अभी अन्य स्पोर्ट्स को देखें, अभी एक एथलेटिक मीट भी हो रहा है कहीं शायद उड़ीसा में, तो वहां कई सारे ऐसे नेशनल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं आज के तारीख में. उसका ज्यादा कवरेज होता नहीं है, ना नेशनल मीडिया पे होता है ना सोशल मीडिया पे. तो एक संतुलन आज के तारीख में नहीं है, वो मेरा मानना है. तो अगर कोई ऐसा एक्शन ले के 3-4 और अधिक स्पोर्ट को ऊपर ले आए और क्रिकेट को स्पोर्ट से हटा करके वो एंटरटेनमेंट कर दे, तो शायद बैलेंस आ जाएगा, मेरा ये मानना है.
0: बट पॉइंट ये है ना मेरे भाई, कौन करेगा ये? आप किसको करने के लिए बोल रहे हो उसको? आप, मैं और आप ही तो हैं जो कुछ करेंगे. इफ एट ऑल वी स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट विल गो डाउन. इफ एट ऑल वी स्टार्ट वॉचिंग ऑल दीज एथलेटिक इवेंट्स, दोज विल कम अप. हम लगातार अपने टीवी को ट्यून ही करते हैं क्रिकेट के लिए, तो बाकी तो मरेंगे ही मरेंगे. अब किसको आप हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा दे कि वो उसको बंद कर दे, वो उसको चालू कर दे?
1: हमारा सब, हम सबको ऐसे मिल करके करना चाहिए. ये एक डिपार्टमेंट का या एक संस्था का वो इंचार्ज नहीं है. That's ये हम right. सबको मिल करके बनाना चाहिए. That's है ना right. तो कई सारे लोग हैं जो ओलंपिक मूवमेंट को, मेरे दोस्तों के सर्कल में दो लोग हैं जो आर्चरी वगैरह इनको सपोर्ट करते हैं, जो ओलंपिक मूवमेंट है उनको उसमें सपोर्ट करते हैं, यानी पैसा देते हैं उनको और उनके कोचिंग के लिए सहूलियत हो उसके लिए वो मदद करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को. तो वो हो रहा है, लेकिन बैलेंस कब तक आएगा ये मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है.
0: जी बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र भाई. जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं माफी चाहता हूं, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि ये हमारा क्रिकेट हमारे दिल के बड़ा नज़दीक है. हम उसके बारे में कुछ भी गलत बात सुनना पसंद नहीं करते. सचिन तेंदुलकर हमारे लिए भगवान हैं, तो वी कैन नॉट लिसन एनीथिंग यू नो विच इज़ नॉट ओके विद क्रिकेट. चलिए जाने देते हैं दोस्तों, विचार कीजिए, आप लोग विचार कीजिए कि क्यों हमारा देश ओलंपिक्स में या किसी में जाकर मेडल नहीं ला पाता, क्योंकि शायद हम क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, मे बी. चलिए विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या ठीक हो सकता है. तब तक राघवेंद्र जी के ही गाए हुए इन गीतों का तो आनंद उठाएं. सो लेट्स मेक इट अ बैलेंस, लेट्स लाइक म्यूजिक, लेट्स लव म्यूजिक एंड एंजॉय म्यूजिक.

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गायकी, चारों तरफ से मजा आ गया गायकी सुन के। तो राघवेंद्र भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले संगीत प्रेमी, कम से कम जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके फैन बने हैं, आपके गीतों को उन्होंने निहारा है, बहुत प्यार से सुना है, बहुत इंजॉय किया है, उन सब के लिए क्या कहना चाहोगे आप? कुछ मैसेज है आपके पास, कोई भी बात दिल में है जो हमारे दिल तक पहुंचे, कह डालिए।
1: तो ये गूगली क्वेश्चन था और यहाँ पर भी मैं क्रिकेट लेके आ गया, लेकिन सोचते सोचते म्यूजिक मेरे लिए एक ऐसा जरिया है और मैं जानता हूं कि अनगिनत ऐसे लोग हैं हमारे साथ में जो म्यूजिक के बिना जिंदगी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। तो मेरे लिए वो है स्ट्रेस बस्टर जिसे कह सकते हैं, या मूड मेकर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ जब मैं उदास हूं तो तब मैं म्यूजिक सुनता हूं, नहीं, कि आई एम ऑलवेज इन टू म्यूजिक, मैं सुनता ही रहता हूँ गाड़ी चलाते वक्त, या फिर मैं अकेले बैठा हूँ काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ करता रहता हूँ। तो म्यूजिक एक जरिया है जिससे हम सब लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ बैंगलोर में जिनसे मैं संगीत के जरिए मिला हूँ, जो हॉबी ग्रुप्स हैं उनके साथ मैं मिलता हूँ, तो सीखने का बहुत मुझे मौका मिला है उन लोगों से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि म्यूजिक इज सेकेंड टू गॉड मेरे लिए और बहुत सारे हम लोगों के लिए। तो हमें सुनते रहना चाहिए म्यूजिक, हमें बनाते रहना चाहिए म्यूजिक, और अपने जीवन में कई सारे मूड्स होते हैं, उसके हिसाब से आप अपने पसंदीदा गाने सुने, उन्हें याद करें, गुनगुनाए, एंड डोंट वरी। मैं तो कभी चिंता नहीं करता हूं कि ये सुर ऐसे बैठा कि वैसे बैठा। एप्स हैं जो बताते हैं कि ये आपका पिच ऊपर नीचे चला गया आधे इत्यादि, लेकिन आई एंजॉय द सॉन्ग, आई एंजॉय द म्यूजिक। तो आई वुड ऑल्सो विश दैट ऑल ऑफ अस कम टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल थिंग कॉल्ड म्यूजिक।
0: ब्यूटिफुल, क्या बात कही, मजा आ गया बॉस। कि म्यूजिक को एंजॉय कीजिए किसी भी तरीके के, क्योंकि प्रकृति ने बनाया है म्यूजिक, वो हमारे साथ तो सिंक्रोनाइज करेगा ही, रिलेट करेगा ही, रेजोनेट करेगा ही। राघवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे बात करके दिल खुश हो गया, खुल गया। थैंक यू।
1: थैंक यू समीर भाई, थैंक यू रेडियो SN, और थैंक यू तमाम जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब रेडियो SN। हम सभी लोगों को साथ मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इस मौके से क्या कह सकते, निहारने के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

0: शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।
1: देखिए भाई, माफ करने से गुस्से, दर्द और दुख की वो श्रृंखला, वो सीरीज टूट जाती है जो हमारी डेवलपमेंट में, हमारे विकास में बाधक बनी हुई होती है। माफ कर दीजिए, हमें जिंदगी की ओर ले चलिए। माफ करने से ना हम आजाद हो जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं और आगे के लिए बेहतर चुनाव कर पाते हैं। इसलिए हम गुस्से और बदलाव की भावना से सुलगते रहते हैं, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। भाई, दूसरों को माफ कर देना अपने आप को आजाद करना होता है। इससे दूसरा आजाद नहीं होता, हम मुक्त हो जाते हैं। कई बार कमजोर और फीका तो कई दफा मजबूत और रोशनी से लबालब चांद समझता है मनुष्य होने का मतलब। जीवन यात्रा में आए दिन तमाम तरह की उठापटक होती ही रहती है, या कुछ समय के लिए कदम पीछे कर लेना हमेशा मंजिल से दूर नहीं करता हमें। लंबी यात्राओं में देखिए, हर पड़ाव जरूरी होता है। गति का महत्व है तो ठहराव का भी उतना ही महत्व है। इसलिए रुकिए, सोच लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। सपनों के